0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: to smack them back.
1: Yeah.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं.

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: I'm dead without you.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।

दिल की म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज

दिल की म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो हेलो, हु इज दिस?

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामईन, हमारे चीता चीता प्रोग्राम, जिस तरह हमारा रूटीन का प्रोग्राम होता है, वो आपके साथ हम शेयर भी करेंगे और आपको बहुत सारी खबरें भी देंगे। समझ नाज़रीन, बहुत सारी खबरें होती हैं जो आप देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। वो बहुत सारी जो लोग लगाते हैं या अपने तर्ज की लगाते हैं, अपने तरीके से लगाते हैं, वो हकीकत नहीं होती। अगर 6 सितंबर की बात हो, 6 सितंबर के नाम को कैश कराया जाए, तो फिर 6 सितंबर वाला माहौल भी बनाना पड़ता है, माहौल भी होना चाहिए। खाली 6 सितंबर का नाम लेकर जो है खबर लगा कर उससे 6 सितंबर मनाने का जो है वो दिन नहीं मनाया जाता। आपकी खबर तो बन जाती है, और ख़ासकर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो हकीकत पर बनाया करें। एक पार्टियाँ होती हैं, हकीकत होता है, कोई भी पार्टी हो, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, वो पार्टियाँ हैं। खुलकर उनका नाम लें, खुलकर उनकी बात करें, खुलकर उन पर बात की जाए, तो ये हकीकत पर मबनी होना चाहिए। दो नंबर खबरें बनाकर उनको लगा देना, अखबारात में लगा देना, उसकी कोई वैल्यू या कोई वक़्त नहीं होती है। हम खुद लोग सारे जो लोकल होते हैं, हमें सब कुछ पता होता है कि हकीकत पर मबनी क्या है, तो इस पर हमें

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है।

और हमारी आयतों को झूठ समझकर जुटलाते रहते थे, और हमने हर चीज को लिखकर जब्त कर रखा है। सो अब मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे।

0: खुद में बैठे हैं, आप दूसरे आदमी किसी को दे, दूसरा आदमी सर टेलीफोन बातें कर रहा है, अब आप उसको ये कहते हैं भाई ऐसा नहीं करो और टेलीफोन बंद करो, तो ये भी कथा गुनाह की बात है कि आपने कैसे कह दिया ये। क्योंकि आदमी खुतबे में जब होता है तो वो ऐसे ही है जैसे नमाज में है, अब एक आदमी नमाज पढ़ रहा है साथ दूसरा आदमी जब बातें कर रहा है, तो नमाज की हालत में आदमी कहते हैं भाई बातें ना करो, तो आदमी नमाज तो खत्म हो जाएगी। इस तरह खुतबा भी ऐसे है, इसी नबी के सर फरमाया कि लगा जिस तरह ये लाव काम या फला जुमा था, उसका जुमा ही नहीं होगा जुमे का वो, तो इसलिए इस बात का नमाजी ख्याल रखें जुमे के अंदर आए तो टेलीफोन अपना बंद करके आए, और जब खुतबा हो रहा है इधर उधर कोई तवज्जो ना करें और तवज्जो से खुतबा सुने, और फिर अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला जो है ये इस खुतबे की जो बातें हैं अच्छी बात, इस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, तो दुआ अल्लाह ताला से किया करें। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे की जहाँ फजीलतें हैं उसमें फरमाया कि जुमे के दिन एक ऐसा वक्त होता है, ऐसी टाइम होता है कि उस दिन जो मोमिन जो भी अल्लाह से दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करते हैं, और ये वक्त फरमाया कि ये असर और मगरिब के दरमियान ये वक्त होता है, ये बड़ा कीमती वक्त होता है। तो भाई इस वक्त में जो भी कोई आदमी मुसलमान जो है वो अल्लाह से दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी कर दुआ सुनेगा, तो भाई किसी के और कोई दुआ ना हो तो यही कम से कम इस टाइम दुआ कर लिया करे अल्लाह ताला उसके रिस्क की हलाल कशादा अता फरमा दे। और ये जितने लोग मतलब ये यहाँ बार बार अफसोस से कहना पड़ता है, कोई स्पीड हाल चला रहा है कोई खोसुक चला रही चला रहा है, तो मुझे यकीन है कि ये जो भी लोग हैं ये हर मुसलमान हैं और ये जायज समझ काम नहीं करते हैं, ये जायज समझ ये फिर तो ईमान से खत्म हो जाएंगे ना, तो मजबूरी से कर रहे होंगे, तो भाई ये मजबूरी में अल्लाह से दुआ करें अल्लाह आपकी मजबूरी ठीक कर दे, अल्लाह ताला मुझे इसके हलाल अता फरमा दे, ये दुआ तो करो कम अज कम। तो ये जुमे का ये टाइम होता है अगर आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपके इसके हलाल के दरवाजे खोल देगा, अल्लाह ताला खजाना अल्लाह ताला के पास है, वहां से आपको रिज़्क देगा, मिन हैसु ला तहतसिब, आपको वह गुमान भी नहीं होगा, लेकिन आपकी नीयत तो हो कम अज कम। तो इसलिए जो है ये जुमे का जो मुबारक दिन है तो कम अज कम इस दिन में अल्लाह से खास दुआएं किया करो, जो आपकी परेशानियां हैं और इस नीयत से करोगे कि अल्लाह ताला वही मेरी परेशानी को हल वही कर सकता है, तो आपकी अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देगा। तो इसलिए ये रिजक के पीछे लग करके तो आप अल्लाह की नाफरमानी करो, और रिजक के पीछे इस रिजक के लिए कहाँ से हम धक्के खाते आए, यहाँ सारे जो हमारे लोग हैं यहाँ पर अपने अपने मुल्कों से, या तो उस मुल्क से आए हो कि यहाँ रिज के हलाल खाओ कशादा खाओ, यहाँ भी रिज के हराम यार खाना तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बदनसीबी है ये। तो इसलिए यहाँ आपका ज्यादा आजकल आ रही है जी, बहुत दुख की बात है कि जो नौजवान बाज दफा कोई ये नशे के काम करते हैं, मनशियात का काम करते हैं या नजायज चीजें बेचते हैं जो कानून में भी मना है, तो ये बड़ी दुख की बात होती है। भाई आप जो है जब अल्लाह ताला खैरुर राज़िकीन है अल्लाह ताला से तो मांगो, तो आप कोशिश करो जायज तरीके से, और अल्लाह से अल्लाह ताला आपके लिए कशादा रिजक भी अता फरमा देगा, तो अल्लाह तरह रजू करो, बजाय इसके कि गलत तरीके से चलते हैं तो इसकी वजह से सारी नस्लें खराब हो जाती है, नस्लें तबाह हो जाती है, और आए दिन खुलते हैं बड़ी तकलीफ होती है। तो बहरहाल जुमे की इस बड़ी अहमियत है, इसका खास ख्याल रखें, और फिर जुमे के दिन क्या करना है, जुमे के दिन क्या आपने साफ जिस्म को साफ करना है, कपड़े साफ पहनना है, गुसल करके आना है, और फिर नमाज में जल्दी आने की कोशिश करो। ज्यादा खास करके जो लोग हैं जो है जिनके पास कोई काम नहीं है, आपको जो है पेंशन हो गई है किसी और वजह से, अब आपकी महाना अल्लाह ताला ये कहते हैं मन व सलवा बेजकार है, तो अब अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया तो कम अक्सर आखिरत के लिए तो आप करो। पहले एक वक्त था कि आप नौकरी करते थे तो आपको टाइम नहीं होता था, लेकिन अब जब किसी को टाइम मिल गया तो फिर कोशिश करेगा मैं आखिरत के लिए कर लूँ, आखरत की को अल्लाह के कोई इबादत कर लो, तो ये अल्लाह की इबादत है कि जल्दी जुमे के लिए जल्दी आए और जल्दी आकर के बैठे, और जब तक आप मस्जिद में आप बैठे हो खुतबे से जो है पहले बैठे हुए हो, तो जुमे के दिन क्या सबसे अच्छा काम क्या करना, सबसे जो अफजल काम अल्लाह ताला के यहाँ क्या है, वो अफजल काम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, वबारक वसल्लम, ये दुरूद शरीफ पढ़ना ये जुमे के अमल सबसे अफजल अमल है। ये दुरूद शरीफ को के लिए ये कहाँ से पता चला, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جو دن ہوتا ہے وہ یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، پھر افضل دن میں کیا کرنا؟ اس تو فرمایا کہ افاکثر علیہ صلاتن، کہ مجھ پر اس دن کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت سے مجھے درود بھیجا کرو یہ. اور جو ہے پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر دیا ہے، اور جب بھی کوئی آدمی کسی جگہ درود بھیجتا ہے تو وہ اس تک فرشتہ پہنچتا ہے، اور جو ہے وہ فرشتہ پھر مجھے بتاتا ہے کہ آپ کے فلانے امتی نے، فلان ابن فلان، فلانا فلانے آدمی کے بیٹے نے، وہ کہ باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، باپ کا نام بھی، کہ فلانے کے بیٹے نے آپ پر یہ ابھی درود و سلام آپ پر بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے جواب مطلب میں دیتا ہوں، اس کے درود کا، اس کا سلام کا دیتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک دفعہ مجھ پر بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 دفعہ اس پر درود و سلام بھیجیں گے، معنی اس کے لیے رحمتیں برکتیں کا نزول فرمائیں گے. تو کتنی افضل عظیم عبادت ہے یہ. اور فرمایا کہ آپ کی جو ہے جتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں تو ہوتا ہے شک ہوتا ہے اللہ قبول کرے نہ کرے کیا ہے، لیکن فرمایا یہ ایک جو دعا ہوتی ہے درود شریف، اور یہ دعا ہی ہوتی ہے درود شریف، دعا کا معنی ہے کہ ایمان والا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ میری نبی کو ان کے جو ہے درجات بلند فرما، میری نبی کا رحمت برکت نازل فرما، میری نبی کی عزت احترام ہے. تو اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے نبی کی عظمت کے بارے میں. تو یہ ایسی ایک دعا ہے فرمایا کہ یہ کسی حال میں یہ رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ایسی دعا ہے یہ کہ اگر آپ اس دعا کو پہلے پڑھ کے پھر کوئی آپ دنیاوی حاجت آخرت حاجت مانگو گے پھر یہ درود پڑھو گے تو آپ کی دوسری دعائیں بھی اس دعا کی برکت سے وہی قبول ہو جائیں گی. تو جمعے کے دن جو آپ نے کرنا ہے تو بھائی جو ہے درود شریف کثرت سے آپ پڑھا کریں. اور اس طرح پھر جمعے کی ایک دوسری جو سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات کو یا جمعے کو سورہ کہف پڑھنا. سورہ کہف یہ آتی ہے 15 سپارے اور 16 سپارے کے ہے یہ، اور یہ سورہ کہف کی بہت فضیلت آئی. فرمایا کہ یہ سورت کہف جو جمعے پڑھے گا ایک دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ کیسے کہ نور عطا فرمائیں گے جس روشنی آسمان تک جائے گی، اور بعد فرمایا کہ قیامت کے نام کے سامنے یہ نور ہوگا یہ. تو سورہ کہف کا پڑھنا اس کا اہتمام کرے. اور یہ سورہ کہف پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، اور جو ہے سورہ کہف جو ہے اگر آپ پڑھیں گے نہیں کسی کو پڑھنی آتی ہے کسی امام کے پاس جائیں آپ کو پڑھائے گا تو 5-10 منٹ لگیں گے آپ کی سورہ کہف یہ پڑھی جائے گی. تو سورہ کہف کو پڑھنا جمعے کے دن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے یہ. اور اسی طرح سے جمعے کے دن جو ہے فجر کی نماز کے لیے سنت کیا ہے کہ فجر کے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری میں اللہ تعالی انسان یہ سورت پڑھا کرتے تھے. تو گویا کہ یہ جمعے کے وہ اعمال ہیں جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیے ہیں، امت کو ترغیب دیا، اور یہ ایک ایسے اعمال ہے جس کی وجہ سے یہ جمعہ کا مبارک دن امت کے لیے ایک مبارک دن بن جاتا ہے. تو جمعے کے جہاں پر یہ فضیلتیں آئی ہیں مبارک دن ہے، لیکن اس میں مخصوص کو روزہ وغیرہ رکھنے کا اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو مخصوص کر لو روزہ اس کے لیے. ہاں روزے کے لیے پیر کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے. تو بہرحال یہ جمعہ کا انتہائی مبارک دن ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں جمعے کے جہاں اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا خود خیال رکھا ہے اور ان کی مجبوری کا، تو عورتوں کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں کی ہے، جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے. اور جو عورتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ جو عورتیں اپنی زندگی میں جو ہے فرائض پوری کرتی ہیں اور وہ زور کی نماز پابندی سے پڑھتی ہیں، تو اب جمعے کے دن اس لیے نہیں وہ جاتی ہیں، اس کو لیے جانا کو ضروری نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ہٹے جمعے کی نماز کا پورا اجر ثواب عطا فرما دیں گے. تو لیکن اگر کوئی عورتیں آ جاتی ہیں جمعے کے دن اور یہاں جیسے جگہ بھی بنائی جاتی ہے آسانی سے کوئی عورتیں اگر آ سکتی ہیں تو وہ آ جائیں اور اس دن پھر جمعے کی نماز پڑھیں گی اور ان کو اجر ثواب ملے گا. لیکن زیادہ عورتوں کہا گیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے اگر اپنے گھر میں ہی اگر نماز پڑھیں گی وہ زور کی نماز پڑھیں گی اور درود شریف کثرت سے پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا اجر ثواب عطا فرمائے گی. تو جمعے کے دن گویا کہ یہ کام ہے کہ سورہ کہف کا پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، اور جمعے کے دن جو ہے وہ جو ہے ये अमाल ये करना कि अपने कपड़े नजाफत इसका ये पता करना। दीन इस्लाम चूंकि एक ऐसा देखे ये नजाफत का और सफाई सुथराई का दिन है। इस्लाम ने इस दुनिया को जहां पर जो है कुफर की निजासत से पाक किया है और ये वहां पर अल्लाह बदन की निजासत से भी इस्लाम ने ही लोगों को पाक किया। तो इस्लाम जब ये चाहता है कि इस्लामी तारीख में जब लोग जमा हो तो जमा हो तो किसी के से बदबू ना आए, किसी जराबू से बदबू ना आए, तो खुश अच्छे कपड़े अच्छी जरावे पहन करके मजमे में आना चाहिए। तो हर आदमी के लिए फर्ज है। कोई आदमी अगर उसके अंदर ये भी है कि अगर उसकी किसी वजह से उसको जख्म है या किसी वजह से बदबू से आती है तो उसके लिए कहा गया आप घर में बैठो, आपको जुम्मे में आने की जरूरत नहीं है कि आपकी बदबू वैसे दूसरों को तकलीफ हो। इसलिए जुम्मे आने के लिए ये भी कहा गया है कि जुम्मे में आओ तो थूम वगैरह खा के ना हो, प्याज खा के ना हो, जिसकी बहुत दूसरों को आती हो। ये इस्लाम की तालीमात हैं। ये तो इस्लाम गोया के आपको आने का जो हुक्म देता मस्जिद में एक मकसद है, आप आए कपड़े साफ सुथरे हो, खुशबू लगाई हो, फिर लोग आपको देख के खुश होंगे, बात करेंगे, एक दूसरे के हालात का पता चलेगा, फिर खुतबा होगा और खुतबे में कुछ दीन की बातें पता चलेंगी। इसलिए इमामों को ये भी जरूरी है कि जुमे के दिन जो खुतबा दिया करें कुरान हदीस से खुतबा दिया करें। ये तज़कीर के लिए होता है, याद दहानी के लिए होता है, बुराइयों से लोगों को खुल के मना करें। इसकी फिक्र ना करें इमाम अगर खुतबा दे तो डरे कि मैं अगर खुतबे में किसी को हराम हलाल की बात कही तो मस्जिद के जो फोरमैन मुझसे नाराज हो जाएंगे। वो गोया कि इमाम इमामत के हकदार ही नहीं है। वो जो बात को छुपा लेता है लोगों से डर की वजह से, तो वो इमाम तो गोया कि उस प्यारे का जो है अपने ईमान की खैर बनानी चाहिए। तो आबदी को जो है इमाम का ये काम है, इमाम ही लोगों को बताएगा कि भाई ये काम आपका जायज नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। ये इमामों को डंके के चोर लोगों को ये कहना चाहिए, खासकर यहाँ शिकायतें ही आती हैं, ये गलत काम तो करते ही हैं, ये शिकायतें भी आती हैं, लोग लोगों से काम करवाते हैं, उनको उनके उजरत नहीं देते हैं, ये भी आता है। ये लोगों को बताना चाहिए कि सारे काम हराम का आप कर रहे हो, दूसरे का हक हाँ खाना, इसकी जो है यहाँ इतनी बड़ी सजा है कि फरमाए इस आदमी का नमाज जनाज ना पड़ जाए जो किसी दूसरे का हक हाँ खाता है। ये तो बहरहाल ये इस जुमे की तालीमात यही आता है ना, ये कि जुमे के दिन जो है 11वीं और 12वीं आई और मत खाने पीने बातें शुरू कर। ये चीजें असल में इमामों का काम है लोगों को बताए और ताकि लोगों की इसलाह हो जाए। बहरहाल ये जुमे का दिन उसी मुनासिबत से ये दर्स क्या है ताकि लोगों को बात समझ आ जाए, आसान है। तो जुमे के दिन खास जो काम है वो आप सोचें कि मैं जुमे क्या काम करना है, तो जुमे खास दिन ये जो है करना दुरूशी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, सूरह कहफ पढ़ना, ये जुमे को खास आमाल है, मस्जिद में आना, तो तब ये जुमे जो है आपको इसको पूरी अजर सवाब हासिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक दे और खास करके दुआएं करें अपने मरहूमिन के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इसमें काफी आजमाइशों में है, उसके लिए आपने दुआ करें सारी आज उम्मत मुस्लिमा के लिए। और फिर आजकल तो हरमैन शरीफ है वो वहां जो है सऊदी अरब के जो गलत काम है अपनी जगह गलत है, लेकिन उसका बहाना बना करके हरमैन शरीफ में किस्म की जो है गंदा मंसूबा रखे और ये करे, तो ये भी उम्मत की बड़ी आजमाइश है। तो उसके लिए भी आप दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के आपस में इत्तेहाद पैदा करे, हर फितने से अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए, अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, बीमारों को अल्लाह शिफ़ाए कामिल आजरा नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: सामाईन नाजरीन, आपने इलामा फारूक सुल्तान साहब का खिताब सुना। सामाईन नाजरीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही वो गौर तलब है। कुरान पाक को खोलें, पढ़ें, हदीस की कुतुब पढ़ें, उलमा की सोबत में बैठें, तो जब आप कुरान पाक ख़ुद पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों में आसानी आ जाएगी। तर्जमा उसका पढ़ें, समझ आ जाएगी, मसले मसाइल आपको समझ आ जाएंगे। बहरहाल ये उनका खिताब था, आपने गौर से सुना, हमने भी सुना। सब नाज़रीन, आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे, आज यहाँ की बात करेंगे, यहाँ के बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: आने वालों, ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सामो नाज़रीन, ये मिला जुला हमारा प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। समाइन, हमारे जो रूटीन के प्रोग्राम होते हैं सुबह, हम आपको बता देते हैं, अपने इंट्रो में बता देते हैं। इस वक्त तो आपके हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इनसे मौसम के हालात जानने की कोशिश करेंगे, या डनमार्क के हालात जानने की कोशिश करेंगे, बीमारियों के हालात जानने की कोशिश करेंगे, सियासी बीमारियों की तरफ जाएंगे। तो शाह साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
1: और जैसे कि आपने कहा कि मौसम इस वक्त, मैं खुद बाहर हूँ और मौसम बहुत प्यारा है, और इस वक्त ना सर्दी है ना गर्मी, और लोग बाहर निकले हुए हैं, सेलें लगी हुई हैं हर जगह, बच्चों के कपड़ों पे, बड़ों के कपड़ों पे, हर चीज पे सेल लगी हुई है, और लोग जो है वो मार्केटों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कि कब ये सेल खत्म हो जाए और कब दोबारा प्राइसेस जो है वो।
0: तो शाह साहब, महंगाई किधर गई
2: जी?
0: सेलें लगी हुई हैं लेकिन महंगाई किधर गई?
1: ये महंगाई, ये कौम जो है ये इंसाफ करने में देर नहीं लगाती। यहाँ पे कुछ चीजों में है कि आपको सियासी चीजों में इंसाफ नहीं मिलता या कुछ चीजों में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे खसूसी तौर पे खाने पीने वाली चीजें, बच्चों के साथ रिलेशन, बूढ़ों के साथ रिलेशन, चीजें जितनी भी हैं वो, क्योंकि टैक्स में इनको छूट मिलती है, टैक्स बकायदा इनको सेल लगाने की इजाजत देता है। सिर्फ हमारी दुकानों पर सेल नहीं लगती, वहां पे सेल लगती है जो चीजें पुरानी हो जाती हैं या बिल्कुल ही एंड पे जाने की, डेट खत्म होने की होती है, तो वो लगा देते हैं कुछ चीजों की सेल, लेकिन महंगाई वहीं पे है। लेकिन डेनिश शॉप्स पे आप चले जाएं तो आपको बिल्कुल हर चीज, आप देखेंगे इस वक्त हर कपड़े वाली दुकान, किसी भी सेंटर पे चले जाए आपको फॉरनर्स का भी और डेंचों का भी रश नजर आएगा, और लोग बढ़ चढ़ के जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। जी राजा साहब।
0: शाह साहब, क्या बात है, हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं, आपने बताया कि टैक्स से छूट भी मिलती है अगर सेल लगाएं, नुकसान हो जाए, चीज़ ज़ाया हो जाए, उस पर भी टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी दो नंबरी होती है।
1: वो इसलिए दो नंबरी होती है कि हमने दो डिफरेंट कल्चर में रहना होता है, एक कल्चर हमारा यहाँ का है और एक कल्चर हमारा वहां का है, जो हमारे जिस मुल्क से हम बिलोंग करते हैं। तो जब दोनों मुल्कों के लिए कल्चर के लिए हमने जाना है, तो फिर हमें गाड़ियां भी बड़ी चाहिए, हमें अखराजात भी ज्यादा चाहिए, तो उनके लिए जो है वो दो नंबरी करने पर लोग जो है वो मजबूर हो जाते हैं, कि वो बताना चाहते हैं कि हम तुमसे ज्यादा जो है वो बड़े हैं और हमारे पास ज्यादा पैसा है, हमारे पास ज्यादा कुवत है, इस तरह की बातें। लेकिन जो डेनिश होते हैं,
0: क्या ये कल्चर और दीन इजाजत देता है इन चीजों की?
1: नहीं जी, इस्लामिक कल्चर इसकी इजाजत नहीं देता। आप देख लेंगे डेनमार्क के अंदर बड़े बड़े डेनिश जो हैं, आज के दिन जब उनको छुट्टी होती है सैटरडे संडे, ख्वाब हो के ही बड़े ट्रैक्टर हो, मालिक हो, वो अपना गार्डन खुद साफ कर रहे होते हैं, अपने कारें खुद धो रहे होते हैं, अपने घरों में सफाई खुद कर रहे होते हैं, हर एक चीज, इवन अपने टॉयलेट तक वो खुद साफ कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग जो है इस चीज से भरा है, हम लोग समझते हैं कि ये हमारी हद तक है, तो हम मजबूरन ये करते हैं कि अपने ज्यादा से ज्यादा जो अपने बच्चों या बीवियों को इस चीज पे मजबूर करते हैं कि आप करें। लेकिन जब हमें कहीं जाना है, कहीं हम कोई शादी ब्याह या कोई कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पे हमें ये देखना होता है कि भाई लोग हमें हमारी गाड़ियों के हिसाब से, हमारे कपड़ों के हिसाब से हमें जाने। तो ये चीजें जो है, ये इस्लामी तालीम और ये ट्रेडिश कल्चर जो है, इसके
0: तो हिसाब से कमतरी में आती हैं।
1: जी बिल्कुल, आप देखें कि यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, सूट पहना हुआ है मामूली सा, नीचे टेनिस शूज पहने होते हैं। आप ये देखिए कि हमारी वजीर आजम आती है या कोई मिनिस्टर आता है तो वहां पे 5-10 आदमी बैठे होते हैं, या वो ऑन टाइम आते हैं, बिल्कुल ऑन टाइम आते हैं। वो ये इंतजार नहीं करते कि साहब आएंगे तो बदे फुल हो जाए फिर हम साहब को बुलाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, हमारे कल्चर में क्या होता है, यहाँ पे हमने आज तक इस कल्चर से, डेनिश कल्चर से ये बात नहीं सीखी जो हमारे इस्लामिक कल्चर में है कि आप जब लोगों को इनवाइट करते हैं तो सबको बराबर का दर्जा दे। यहाँ पे ये होता है कि बड़ा कौन है उसको आगे बैठाए, छोटा कौन है उसको पीछे बैठाए, फिर साहब का इंतजार करो, घंटों लग जाते हैं कि भाई जो चीफ गेस्ट है वो किस वक्त आएगा। तो ये चीजें जो है वो हमने अपने आपको एक नए कल्चर की शक्ल दे दी है। जी राजा साहब।
0: तो शाह साहब जब आप 70-71 में आए के आए थे तो यही कल्चर था?
1: बिल्कुल ये कल्चर नहीं था, बिल्कुल हर चीज जो थी वो इत्तेदाल पे थी। यहाँ पे लोगों को उनके नाम से बुलाया जाता था, किसी को ये नहीं पता होता था ये कौन से फिरके से रखता है, कौन सी मस्जिद में ये नमाज पढ़ता है, क्या करता है क्या नहीं करता। तो यहाँ पे एक उस वक्त एक बिल्कुल ही अलग कल्चर था, और हमने डेनमार्क के कल्चर को फौरन अपना कल्चर समझ के अपना लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हम उस कल्चर में अपनी औलाद को भेजना चाहते हैं या अपने आप को, और हमारी औलादें जो हैं उनको ये सिखलाया जाता है कि आपने अपने कौम में जाना है तो आपके पास टेस्ला लैंड क्रूजर होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, वहां वो आप किराए पे ले जिस तरीके से भी ले। तो यहाँ पे भी उनको ये बताया जाता है कि आप फलानी शादी में जाना।
0: साहब हम दूसरों की बात कर रहे हैं तो आप छुट्टियों पे जाएंगे तो आपके पास कौन सी लैंड क्रूजर होगी?
1: मेरे पास चिंचली होगी, मेरे पास डायवो गाड़ी होगी, बस मैं तो बिल्कुल जैसे जाता हूँ तो मैं वहां गाड़ियों को मैं
0: शाह साहब आपने बात जिक्र किया, आपने टिलबुर का सेल का जिक्र किया, तो आजकल जो टैक्सियों पर सेल लगी हुई है जो है इतने रूट पे जाएं फलां कंपनी की जाएं तो दो जो है वो 50% है, 40% है, 80% है, खाने की छूट मिलती है, तो शाह साहब ये क्या हो रहा है?
1: देखिए जी जो टैक्सियों की छूट है तो टैक्सी सेल्स के जो है ये बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई है। अब तो ये किस्म की फैक्ट्रियां बन गई हैं, बड़ी बड़ी सेल्स के जो है उन्होंने गाड़ियां खरीद ली हैं। अब वो जो है वो खुद ही अपनी मर्जी से ये चीज रखते हैं कि क्या वो अपना ये जो
0: शाह साहब इस पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे पार्ट टू में। तो हमारा पार्ट वन अब तकरीबन ख़त्म होता है। आज हमारी मेहमान होंगी एक शायरा है, उनसे हम बातचीत करेंगे और उसके बाद दोबारा हम पार्ट टू में दाखिल हो जाएंगे।
1: ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
0: सामान नाज़रीन ये थे सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब जो कि थिंक टैंक है। ये पार्ट वन था, तो पार्ट टू के बाद हम दोबारा आपके साथ आएंगे। तो थोड़ी देर के बाद एक शायरा हैं जो हमारी मेहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ साथ रहिएगा।
3: سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 20/9/2026 کا پروگرام ہے, تقریباً 12:30 بجا چاہتے ہیں. جس طرح ہم نے صبح انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے اور ایک آدھ ہمارے اسپیشل مہمان بھی ہوتے ہیں. یہ بڑی دور سے ہیں, کسی تعارف کے یہ محتاج نہیں ہیں. یہ شاعرہ ہیں, یہ میڈیا کے ساتھ منسلک ہے, یہ آن لائن مشاعرہ بھی کرتی ہیں, اپنے پروگرام بھی بناتی ہیں. آپ انہیں یوٹیوب پر بھی دیکھتے رہتے ہیں, فیس بک پر بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور جو ہمارا میڈیا ہوتا ہے لوکل میڈیا پہ اس کی بھی یہ زینت بنتی رہتی ہے. میری مراد ہے ممتاز ملک صاحبہ, آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر اپنی ٹیم کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جی وعلیکم السلام, اور بہت شکریہ راجا غفور صاحب, بہت عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. بہت اچھا لگا آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو میری جانب سے. السلام علیکم.
0: بہت شکریہ ممتاز ملک صاحبہ, میں نے آپ کا تعارف تو کرا دیا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں, میں چاہوں گا ذرا آپ اپنا تعارف بھی کرائیں. میں نے بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی ہیں.
1: جی بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کے لیے. میں نام تو جیسے آپ بتا چکے ہیں, ممتاز ملک میرا نام ہے, پیرس فرانس سے میرا تعلق ہے, راولپنڈی پاکستان کی پیدائش ہے میری, اور میں یہاں پر فرانس میں تقریباً 28 سے مقیم ہوں, 98 سے لے کر آج یہاں پر نیشنل ہوں یہاں کی. میں نے لکھنا تو بچپن سے ہی لکھنا اور شاعری تو بچپن سے تھا, لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ چھپاؤں گی. لیکن فرانس آنے کے بعد پھر میں نے ایک مذہبی ادارے میں جوائننگ کی, جس وقت اس وقت میں نے وہاں پہ پڑھانے کا کام بھی کیا. اس کے علاوہ بطور نعت خواں کے بھی, اسکٹ رائٹنگ کے بھی, اس کے علاوہ نعت گوئی بھی, اور اسٹیج سیکرٹری, پھر جنرل سیکرٹری کے طور پہ پھر میں نے لاسٹ میں جو اپنا کام کیا. تو یوں تقریباً 16 میں نے ہر چیز کے اوپر کام کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملا. اس کے بعد پھر میں نے اردو کی جانب رخ کیا کہ ہم اپنی زبان کے لیے کام کرتے ہیں. تو پھر 2010 سے باقاعدہ میں نے اپنی کچھ چیزوں کو اکٹھا کرنا, دوستوں کے کہنے پر کہ اب آپ اس کو پبلش بھی کریں, تو پھر وہاں سے پبلشنگ کا بھی کام شروع ہوا. اور 2010 سے پھر میری پہلی کتاب کی تیاری, اور 2011 میں اس کی رونمائی, اور یوں 2011 سے لے کر 10 سے لے کر آج تک میری اب تک ماشاء اللہ 10 کتابیں آ چکی ہیں ان 16 میں. اس میں میرے پاس شعری مجموعہ کلام پہلا 2011 میں مدت ہوئی عورت ہوئے کے نام سے آیا, دوسرا مجموعہ کلام 2013 میں آیا میرے دل کا کلندر بولے کے نام سے, تیسرا مجموعہ پھر میرے آرٹیکلز جو چھپ رہے تھے مختلف موضوعات کے اوپر, سماجی اخلاقی موضوعات کے اوپر. یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے, گھریلو موضوعات, سماجی موضوعات, اخلاقی موضوعات. تو اس پر پھر جو کالم چھپ چکے تھے اس میں سے ہم نے چنیدہ کالم اٹھائے, اور سچ تو یہ ہے کہ نام سے میری کتاب شائع ہوئی 2016 میں. اس کے بعد میری اگلی کتاب جو تھی, کیونکہ میرا سفر صرف شاعری تک نہیں تھا, شاعری, نثر نگاری, کہانی, پھر بیچ میں پنجابی شاعری کے لیے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ پنجابی ہونے کے باوجود آپ نے کبھی پنجابی میں کچھ نہیں لکھا. میری پنجابی کوئی بالکل اچھی نہیں تھی, لیکن پھر بڑے دوستوں نے جب تانے وانے دیے تو سوچا کہ چلیں گھنگا لیں اپنے ذہن کو آگے پیچھے, تھوڑا بولنے میں بھی پریکٹس لاؤ, اور یوں پنجابی کا سفر کا آغاز ہوا, اور اس میں بھی کام شروع ہو گیا تھا. لیکن تب تک 2019 میں پھر میرا پہلا نعتیہ مجموعہ کلام وہ تیار تھا اے شہ محترم کے نام سے, الحمدللہ 2019 میں آیا. پھر 2020 میں میرا اردو شعری مجموعہ سراب دنیا, جس کے اوپر سوابی یونیورسٹی میں ایم اے کا مقالہ لکھا گیا, پہلا مقالہ میرا اس پہ لکھا گیا 2018-20 تک کا. اور اس کے بعد بی ایس بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے اس پر بی ایس کا مقالہ لکھا گیا, اور یوں سراب دنیا میری وہ پہلی کتاب جس کے اوپر یہ مقالہ جات ہوئے, اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں آگے جو تب مجھ تک نہیں بھی پہنچے. تو اس کے بعد میری اگلی کتاب, کرونا شروع ہو گیا تھا تو کرونا کے زمانے میں پھر آن لائن پروگرامز ہونے شروع ہو گئے, تو وہ جو زمینی سلسلہ تھا وہ منتقل ہوتے ہوئے بہت ساری تنظیمات جو کہ انوائٹ کرتی تھی, اور وہاں پھر میں بطور شاعر کے شامل ہو رہی تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب مجھے کہا کہ اب آپ کیونکہ زمینی کام سے فرصت ہے آپ کو, تو آپ نظامت میں یہاں پہ آئیے نا, تو پھر کرتے ہوئے گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ, اٹلی کی جو ادبی تنظیم ہے ان کے ساتھ مجھے 2023 میں نے پھر ان کو جوائن کیا باقاعدہ نظامت کار کے طور پہ. जनवरी से, तो वो जो सिलसिला था उसमें फिर मैं काफी लंबे प्रोग्राम भी हुए, 5-5 घंटे के मुशायरे भी होल्ड किए, उस वक्त मैं उन्हीं के टाइटल पे कर रही थी। इस बीच मेरी किताबों का सिलसिला जारी था जो मैं अपना काम कर रही थी, तो फिर मेरी अगली किताब जो तैयारी मुकम्मल हुई वो थी जनाब शराब दुनिया के बाद जो अगली किताब थी, वो भी मेरा अगला जो मेरा मजामीन का मजमुआ था वो तैयार हुआ लोहे गैर महफूज के नाम से 2022 में। उस वक्त का काम मुकम्मल हो चुका था, वही आर्टिकल्स जो मेरे प्रिंट हुए थे बाकी बाद में उनके ऊपर, ये मेरी दूसरी किताब थी। तो लोहे गैर महफूज 22 में आई, फिर उसके बाद जनाब 24 में मेरी किताब फिर से एक उर्दू पंजाबी शेरी मजमुआ, सॉरी वो मेरा इस दौरान आ चुका था 2023 में, उसका नाम था ओ झलिया, जो माशाल्लाह बहुत पसंद की गई, जिसके गीत भी माशाल्लाह गाए गए और टाइटल सॉन्ग ओ झलिया के नाम से अभी रिलीज भी हुआ यूट्यूब के ऊपर, दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत से नवाजा। आप जरूर सुनिएगा ओ झलिया, आपको यूट्यूब पर जरूर मिलेगा, मुमताज मलिक पेरिस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल मौजूद है, तो जो दोस्त सुनना चाहें उनको यकीनन अच्छा लगेगा, जरूर सुनिएगा, टाइटल सॉन्ग है मेरी किताब का। उसके बाद और वो चला गया 2024 में आई, और उसके 2024 में छप चुकी थी जनवरी में, और फिर उस दौरान फिर मेरी किताब सच्ची कहानियों का मजमुआ कतरा कतरा जिंदगी के नाम से, जो कि यूरोप में और खुसूसन फ्रांस में पहली किताब है जो कि किसी गैर फ्रेंच ने, पाकिस्तानी नजाद ने या किसी गैर फ्रेंच ने यहाँ पर कहानियां जो सच्ची कहानियां हैं उनके नाम और जगह बदल के वो कहानियों का मजमुआ 2024 में मेरा शाया हुआ, और यहाँ भी उसकी रुनमाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मैं फ्रांस में काम करने वालों में वो पहली खातून हूँ, जब वो पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जिसने उर्दू जुबान में या पंजाबी जुबान में पहली जिसकी पंजाबी किताब शाया हुई, जिसका पहला पूरा महफिले नात जो होती है हम मिलाद बुक बोलते हैं, ऐशे मोहतरम के नाम से पहले ही नातिया मजमुआ कलाम शाया हुआ, मुझसे पहले ये रिकॉर्ड में किसी के पास भी नहीं है। उसके अलावा मैं ही वो पहली खातून हूँ जिसकी नसरी किताबें सच तो ये है या और वो सॉरी लोहे गैर महफूज, ये दो किताबें आई। शायद वजह ये भी है कि हमसे पहले अभी तक हमारी आबादी इस वक्त 1.5 लाख पाकिस्तानी हम यहाँ आबाद हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चियों को या खवातीन को हैं शायद मुझसे भी कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन यहाँ पर होंगी, लेकिन जो लोग उनको ब्याह कर लेकर आए वो खुद पहले तो इतने तालीम याफ्ता नहीं थे, जिनके साथ बीवियां उनको शायद ग्रेजुएट मिल गई या मास्टर्स मिल गई पेरिस के नाम पर, तो उन्होंने फिर उनको लाकर बस उनको कहा कि बस भाई अब रोटी गोल होनी चाहिए और ब्रोस्ट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, तो उन्होंने उनको उस चीज में ऐसा लगाया कि वो मेलों में सारी रात गुजारे उन्हें एतराज नहीं है, वो सारी रात शादियों में नाचती रहे उन्हें एतराज नहीं है, गले में दुपट्टा लटका के भी घूमे उनको कोई एतराज नहीं है, पैसे कमाने कहीं चले जाए उनको कोई एतराज नहीं है कि पैसे आने चाहिए बस, लेकिन कहीं अदबी काम में आना, क्योंकि इसमें पैसे नहीं ना, इसमें कमाई नहीं है हमारे पास, हम तो पल्ले से लगा के करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे अदबी महाफिल में प्रोग्राम अटेंड करने के लिए भी आने को तैयार नहीं, फिर हमारे मजहबीदारों ने जो लंगर की आदत डाली हुई है उस लंगर की आदत से निकलने को कोई तैयार नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम जहाँ पे आपको 10-20 अपने पास से खर्च के अपना खाना खाना पड़े, हमारे मर्द भी जाने को तैयार नहीं होते, और खवातीन तो बिल्कुल उनके लिए तो अछूत की बात है, तोबा तोबा तोबा, मर्द बैठे होते हैं वहां नहीं जाना। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसके साथ जिहाद करते करते मैंने यहाँ 28 साल गुजारे हैं, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन 4 प्रोग्राम्स कर रही हूँ सारी दुनिया के साथ मिलकर, इस वक्त 2023 से जो मैंने सफर ऑनलाइन के साथ बाकायदा निजामत में शुरू किया था, अब मैं ग्लोबल के साथ नहीं हूँ बल्कि ग्लोबल के बगैर अपने हम लोग प्राइवेट अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं और सारी दुनिया से शोरा कराम इकट्ठे होते हैं, अब मैं 4 मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही हूँ, इसमें पाकिस्तान वक्त रात 8 बजे हर बुध को उर्दू मुशायरा, राहे अदब फ्रांस मेरी तंजीम है रजिस्टर्ड उसके तहत, और हर जुमे को पंजाबी मुशायरा पाकिस्तान टाइम रात 8 बजे, दुनिया भर के शायर जो शरीक होना चाहे अपनी शायरी लेके आना चाहे वो वेलकम किया जाता है, 20 शायर मैं उसमें लेती हूँ, 2 घंटे की हमारी ये नशस्त होती है हर बुध और जुमे को, यानी ये उर्दू और पंजाबी मुशायरा। इसके अलावा कल सोमवार है तो हर सोमवार को अब मैंने प्रोग्राम शुरू किया है कुछ गल्ला बातां, ये पंजाबी प्रोग्राम है, इसमें हम चार मेहमान लेते हैं जो खुद को आना कंफर्म करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने जो शुरू में मौजू रखा था, हमारा ख्याल था हम हर प्रोग्राम में अलग मौजू रखेंगे, लेकिन ये मौजू इतना टची था और हर इंसान को इतना इसने करीब किया कि लोगों ने कहा कि हम और भी लोगों को सुनना चाहते हैं कि वो अपने बचपन की पैदाइश से लेकर 10-12 साल की उम्र तक जो भी उनकी यादाश्तें हैं उस जमाने दिया, खेड़ा यादा, इर्द गिर्द का माहौल, करंसी क्या चलती थी, कितने पैसे मिलते थे, टिफिन में क्या लेके जाते थे, अम्मी जी सुबह क्या बनाती थी वगैरह, बड़ी मजेदार गुफ्तगू होती है ये। तो सब एक कथारसिस शो है, ये पहला पंजाबी कथारसिस शो है जिसमें हम वो टाइम पीरियड 10 साल तक का जो है वो दोस्तों के साथ जीते हैं, 20-20 मिनट सबको बात करने को मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। जो भी शामिल हुए उनको बहुत उन्होंने अच्छा सुनने और कहने वालों ने रिस्पांस दिया। फिर हर मंगल को कशीद लम्हे के नाम से एक इंटरव्यू शो, 1-to-1 प्रोग्राम्स है, 1-to-1 दो लोग हम बात करते हैं, कोई भी एक मेहमान जो मेरे कन्फर्म होते हैं उन्हीं का पहले पोस्टर भी बनता है और इसके अलावा फिर उनके साथ मैं कुछ सवाल भेजती भी हूँ, फिर उसी में से बात निकलती है और हम उनसे ही वाबस्ता कुछ और सवाल बीच में शामिल करते हैं। ये भी 1.5 घंटा 2 घंटे के बीच के दौरानिया का एक इंटरव्यू शो होता है, ये उर्दू प्रोग्राम है और हम अपने मेहमान की जिंदगी से कुछ खास लम्हात को कशीद करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जो कुछ वो कहना चाहते हैं हम बाय फोर्स कुछ नहीं निकलवाते किसी से, जो वो अपनी खुशी से अपनी समझदारी के साथ अपना जो भी अहवाल सुनाना चाहें, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें, उनको पूरी हम उनको पूरी प्लेस देते हैं, जगह देते हैं इस बात के लिए। इसके अलावा आप बताया ये 2 मुशायरे, तो यूं ये 4 प्रोग्राम मेरे चल रहे हैं, 10 किताबें मेरे भी हाफ पे इस वक्त मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ और किताबों के काम हो रहा है जो कि थोड़े थोड़े किसी की प्रूफ रीडिंग बाकी है, किसी की कुछ है, तो बस वो तबात के मरहले में जा रही है, जैसे जैसे इंशाल्लाह जल्द आपको मेरा और भी मुनफरिद काम देखने को मिलेगा। तो ये है जनाब मेरा सफर।
0: बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा, आपने बड़ा तफसीलन हर चीज़ के बारे में बताया। तो अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं यूरोप में रहते हुए तो फिर आपने तो लाखों यूरो कमा लिए होंगे।
1: काश काश काश काश कि हमारा उर्दू या पंजाबी लिखने वाला भी, क्योंकि जब हमारे लोग किताब ही नहीं खरीदते। आप ये बताएं कि जिस मुल्क में लोगों का ये रुझान हो कि वो 3,000 यूरो पे कर देंगे कहीं जाकर किसी नाश्ते के लिए कि मैंने इससे पाकिस्तान में ना सियासी टिकट खरीदनी है, इसलिए यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके लंगर खिला दो, एक होटल पे अच्छी सी महफिल कर दो, तो वो लोग 10 यूरो की आज तक, यहाँ कितने बड़े नाम है, कितने बड़े बड़े नाम है ना फ्रांस में जनाब, ये यहाँ इतने बड़े बिजनेसमैन और फोरम और ब्ला ब्ला ब्ला, आज तक उनमें से किसी एक ने 10 यूरो की एक किताब नहीं खरीदी, नॉट ओनली मी, किसी से भी नहीं खरीदी कभी। तो जो लोग इतनी खिदमत कर रहे हैं ये कल चौक में बैठ के आपको बताएंगे कि जी ओहो हो आसानी तो जबान खत्म हो गई, और कोई आपको कहेगा कि जी उर्दू खत्म होगी, जी उर्दू कोई नहीं बोलता, तो आपने उर्दू कब बोली थी अपने बच्चे के साथ, आपने अपने घर में पंजाबी कब बोली थी, आपने कब कोई किताब खरीद के लाकर उनको 2 सफ़े पढ़ के सुनाए थे कि उनका शौक पैदा होता, आपने कब उनको अलिफ बे सिखाने की कोशिश की थी। तो ये ड्रामा जो है ना, हम ड्रामेबाज कौम है असल में, हमारा कॉल कुछ होता है, हमारा फेल कुछ होता है, हम जिंदगी यूरोप में गुजारना चाहते हैं और मरना चाहते हैं मक्का मदीना में। तो आप सोचें इतना बड़ा कॉम्बिनेशन जब हमारी जिंदगी में मुनाफकत का शामिल हो, तो वहां पे आपके साथ जो भी हो जाए काम हुआ, मैं तो बिल्कुल अब इतनी जिंदगी गुजारने के बाद मैं कहती हूँ कि अपनी डगर पे मैं काम कर रही हूँ, मैंने हार नहीं मानी और अल्लाह ताला ने मुझे जो कामयाबियां दी हैं सारी दुनिया में, जो नाम या पहचान जो भी कुछ 2-4 लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब क्योंकि समाजी मौजूदात पर पहले सिर्फ कॉलम्स लिख रही थी, अब तो मैं टिकटॉक कॉलम्स में एक तरह से वॉइस मैसेज के तौर पर टिकटॉक पर इस वक्त मुमताज मलिक को आप सुन सकते हैं, वहां पे तो मैं अच्छी इनकी लेटर परेड करती रहती हूँ, जो जो वो मौजूद जो टैबो समझे जाते हैं जिन पे बात होनी चाहिए। देखिए जब भी जिस मौजू को आप तकलीफ समझते हैं उस पर बात नहीं करेंगे तो हल कैसे होगा, बात करेंगे तो उसका कोई ना कोई आंसर निकलेगा, कोई हल निकलेगा। तो मैं उन मौजूद को जानबूझकर छेड़ती हूँ। मुझे यहाँ तक कहा गया तुम्हारे बच्चों की शादियां नहीं होंगी, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा वो नहीं होगा, तुम तो ऐसे खुलकर बोलती हो बात करती हो। मैंने कहा जब मेरी शादी जिससे हुई है ये भी मेरी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था, ना मैंने उसके साथ इश्क लड़ाया था, ना मैं उसको जानती थी। अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना बगैर जाने पहचाने दूसरे शहर और दूसरे मुल्क तक, तो ये मेरा नसीब था। तो मेरे बच्चों का भी जहाँ नसीब होगा ना, अच्छा है तो हो जाए, नहीं अच्छा तो ना हो। ये जिस किस्म की शादियां हो रही हैं, जिस किस्म के रिश्ते हो रहे हैं हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटीज के, चाहे पाकिस्तान में चाहे बाहर, जिस किस्म की गंदगी शादी के नाम पर परोसी जा रही है और खानदानी गुलामी लड़कियों को दी जा रही है, नहीं चाहिए ऐसी शादियां। तो ना मुझे चाहिए ना मेरे बच्चों को चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, खुश है अपनी जिंदगी में। तो हमें इस किस्म के रिश्ते नहीं चाहिए कि जो रिश्ता एक गले का फंदा बन जाए। निकाह नामे को आज आपने फंदा बना दिया है, कहीं लड़की के लिए कहीं लड़के के लिए। तो शादी को एक रिस्पेक्टेड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के बीच में है, वो अपना घराना शुरू करते हैं, अपनी फैमिली शुरू करते हैं। ये नहीं कि घर के 25 लोगों के लिए लड़का एक दुल्हन लाकर उसके बाद माँ के कदमों में रख देता है और खुद बाहर अय्याशी करने, जिना करने चला जाता है कि जी वो कहीं गया हुआ फलानी जगह पर। ये रोज की कहानी है, हम यहाँ देखते हैं कि बेटा बहू ला के वो अम्मी जी के लिए छोड़ जाता है। तुमने नौकरी नहीं करनी, तुमने कुछ नहीं करना, अगर नौकरी करती हो तो तनख्वाह मुझे दो और हमारा घर पालो और अम्मी जी की फरमाबरदारी करो। वो अम्मी जी के निकाह में आती है, पाकिस्तानी लड़कियां अम्मी जी के निकाह में आती हैं या लड़के की बाजियों के निकाह में आती हैं, वो सबके निकाह में आती हैं मां सिवाय अपने शौहर के। उनके शोहर को नहीं पता होता कि ये औरत हमारे निकाह में, ये लड़की मैं ब्याह के लेकर आया हूँ, इसको अल्लाह ताला के आगे मैं जवाब दे। तो लानत भेजे ना फिर ऐसी शादी के ऊपर। ऐसी शादी से तो ना शादी बेहतर है। अपनी बेटियों को पढ़ाने पे फोकस करें, हुनर सिखाने पे फोकस करें, उनको रोटी कमाने पे फोकस करें। उसके दिल में जैसे हमारे माँ बाप ने खौफ डाल के हमें जूते खाने के लिए एक खानदान में छोड़ दिया ना कि तुम्हें अब रोटी कौन देगा, बेटी तेरा जनाजा उतो निकले। बेटी क्यों भाई, अगलिया का जनाजा क्यों ना निकले, थोड़ी बेटी का जनाजा निकले। तुसी ते बड़े बेगैर हो, तो फिर जो तुसी अपनी धियां दे जनाजे वास्ते तुसी लोगों नूं नौकरानियां सप्लाई कर दे हो, वो शादी तो होती भी नहीं है। जब लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ बाप और भाई के मुंह को देखकर सर हिला देना कि जा बेटा ये जिना है, ये शादी नहीं है, ये निकाह नहीं है। निकाह दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को अपनी मर्जी से कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, मैंने तुम्हारे साथ अपनी इज्जत बेइज्जती को शेयर करना है, वो होता है निकाह। पता नहीं हमारे यहाँ जितनी शादी एक सबसे बड़ा मजाक और सबसे बड़ा एक खौफनाक ख्वाब बना दी गई है। लड़कियां ये सोचकर बाप के घर से निकलती हैं कि आगे जाएंगे तो अपनी मर्जी से कुछ पढ़ने का, कुछ सीखने का, कुछ करने का मौका मिलेगा। वहां आके पता चलता है तेरे प्यो दा घर नहीं है, चल चूल्हे ते खलो। चल भाई 35 साल की नंद जो होती है वो छोटी काकी होती है, 11 बजे उठती है और वो सास से बड़ी सास होती है अपनी भावज के लिए, वो ऑर्डर दे रही होती है। और वो जो 20-22-24 साल की लड़की आती है वो समझती है अब ये 45 साल की औरत की तरह पूरा घर संभाल और मुंह से उफ नहीं करनी, अब ये तेरे बाप का घर नहीं। जिसको कहते हैं ना बहू अपना घर नहीं समझती, कैसे समझे? तुम लोगों ने उसे अपने घर की फीलिंग कब दी? तुमने कब कहा कि बेटा ये तुम्हारा घर है? और आके तो हर बंदा उस पर हुक्म चला के जो समझता है कि जनाब अब ये हम सबके जूते के नीचे है, कोई महरम नहीं, कोई ना महरम नहीं घर में, मुंह उठा के देवर आ रहा है, जेठ आ रहा है, नंदोई आ रहा है, हर कोई आंखबाजी कर रहा है। कहते ना बाहर तो सड़क पे तो ठरक झाड़ते ही, हमारी तो कौम अपने घर में अपने घर की औरतों पर ठरक झाड़ने से बाज नहीं आती। वो बेचारी क्या करे, सारा दिन तंबू पहन के फिरे। जब वो किसी एक के चक्कर में अपने आप को सेफ करने के लिए किसी के हत्थे चढ़ जाती है, क्या चढ़े ना चढ़े, लेकिन उसके ऊपर सबसे पहले इल्जाम डाला जाता है कि ये ऐसी है ये वैसी। तो तुम लोग गाजी नमाजी थे तो तुम अपने घर का माहौल ऐसा रखते ना, ये मुंह उठा के सांड रिश्ते घर में क्या करते थे? लोगों की बेटियों के साथ मजाक है, शादी के नाम पर मजाक है। और लड़का वो कहेगा जी मेरे अब्बा जी नु खुश कर, मेरे भाई को खुश कर। वो कितना बेगैरत आदमी है, तो मुझे उनको खुश करने के लिए लेकर आया है। हमारे मर्द ने जिस तरह से शादी की धज्जियां उड़ाई है ना, हमेशा उड़ाई है, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से वो धज्जियां हवा में उड़ उड़ कर हमारे मुंह पे लगती हैं आकर, तो हमें पता चलता है कि अब औरत बोलने लगी है। क्यों ना बोले भाई, रोटी कमाना सिखाओ जिस औरत को। यहाँ पे मैंने ये मेरे साथ रोजाना यहाँ ये ऐसे वाकयात मुझे देखने सुनने को मिलते हैं, क्योंकि बतौर राइटर जब खवातीन अपनी बातों को शेयर करती हैं, या मेरा एक ग्रुप भी है जो मैंने बना रखा है सिर्फ काम की बात के नाम से व्हाट्सएप के ऊपर, तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। वो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी खवातीन बहुत झिझकती थी 5 साल पहले, जाएं आपको तो आपको उस हालत में और आज में बहुत फर्क लगेगा यहाँ की खवातीन के कॉन्फिडेंस लेवल में, जो बहुत बूस्ट किया है माशाल्लाह। उस वक्त तक वो यहाँ शॉपिंग तक करने से कहती थी नहीं पाकिस्तान से इतने का आता है, यहाँ से इतने का आता है। जब उन्हें पता चला कि एक की जोड़ा जो आप खरीद रही हैं, अगर आप 25 यूरो का जोड़ा 30 यूरो का खरीदते, नहीं ये तो पाकिस्तान में 10 यूरो का मिल जाता है, तो उस 10 यूरो के पीछे जो आपने 15 यूरो बचाए, उसके पीछे 1500 यूरो जाके वहां पर टिकट लेकर खर्च करके वहां पे पूरे पूरे खानदानों को पाल के और फिर उन सबकी जेबें भर के जो कुछ आप खर्च करके आएंगे, तो क्या 15 यूरो बचाना बेहतर है या यहाँ से मकामी तौर पर खरीद के सुखी हो जाना बेहतर है? ये चीजें उनको समझानी ही पड़ी, ये उनको ये एक तरह से उनको एक तरह रोजाना डोज देनी पड़ी कि भैया यहाँ का और वहां का पहले मुकाबला करो, फिर देखो कि तुम्हारी जिंदगी जहां आसान होती है। और पाकिस्तान का दौरा करने के बाद कोई शायद आटे में नमक के बराबर, जिनकी कोई माँ या बाप जिंदा हो उनको छोड़कर कोई ऐसा नहीं जो कि खुश होकर पुरसुकून होके आता है। अक्सर मैं ऐसे देखती हूँ जिनको जहाज से ही स्ट्रेचर पर लेके जाया जाता है कि दिल का दौरा पड़ गया, इनको ये हो गया, इनका वो हो गया, इनकी दिमाग की शरियान फटने वाली, इनको ये हो गया, क्या डॉक्टर्स तक वो बेचारे कहते हैं कि ये अपने इन रिश्तेदारियों से और पाकिस्तान के अलावा भी भैया दुनिया में जगह है सुकून के लिए, छुट्टियां होती हैं, तुम लोग जब छुट्टियों से आते हो एक नया स्ट्रेस, नई बीमारियां, नई परेशानियां लेकर आते हो, इससे निकलो, इससे निकलो।

0: खाने में अपना पंजा घुसेड़ दिया है, फिर आपको कोई नहीं पूछ सकता। ये कारोबार है सब, गंद है।
1: अच्छा, कारोबार है, सहूलतकार हैं। तो पिछले दिनों, 2-3 दिन पहले की बात है, हमने देखी कुछ बसें गई हैं, फ्रांस से भी बस गई और दूसरी बेल्जियम से भी गई, इटली से भी लोग आए, जो तो 300-400 या 500 के करीब लोग एक मैदान में इकट्ठे हुए, एहतजाज किया। तो इसके बारे में आपको मालूमात है?
0: जी मालूमात क्या, मैं खुद वहां अवाम में शामिल थी, मैं ख्वास में शामिल नहीं थी, मैं अवाम में शामिल थी।
1: माशाल्लाह।
0: कश्मीर के हक में थी बात, और अक्वामे मुत्तहदा के जो जो दफ्तर है जिनीवा का, उसके बिल्कुल सामने के ग्राउंड में, जहाँ कहते ना टूटी कुर्सी लगी ना, जिथे ओ तीन टंगा वाली, वो माशाल्लाह टूटी कुर्सी सही, बड़ी अच्छी अलामत है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि ये वो इंसाफ का दरबार है जहां पर इंसाफ लूला लंगड़ा आपको मिलता है। तो अकौम मुत्तहदा का भी वही हाल है जो हमारी अदालतों का हाल है या हमारे यहाँ के इदारों का हाल है, तो यहाँ भी इंसाफ उसी तरह एड़ियां घसीटते हुए और चौथी टांग का मोहताज है। वहां पे हुआ और अच्छा एहतजाज था और लोगों ने अच्छा खुल डुल के हिस्सा लिया, और अच्छा था कि जो कि शिक खत्म की गई 700 और कुछ नंबर की, जो हिंदुस्तान ने उसे अपना हिस्सा बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर में उसे अपना सूबा करार देने के लिए, उसके 7 साल मुकम्मल हो रहे थे, तो उस सिलसिले में ये एक एहतजाजी मुजाहरा था। लोगों ने अच्छी मोहब्बत से उसमें हिस्सा लिया। बिल्कुल यहाँ से जाहिद हाशमी साहब का ये काफिला गया था, एक बस थी पूरी फ्रांस से, तकरीबन मेरा ख्याल है 70-75 के करीब लोग होंगे उसमें, भरी हुई बस थी, फैमिलीज थी उसमें, यानी कि खवातीन भी थी, उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे, बच्चे, बड़े बच्चे भी थे, जवान बच्चे जिनके थे वो भी साथ में थे, तो एक अच्छा मुजाहिरा था माशाल्लाह। और बाकी मुल्कों से भी, मेरा ख्याल दूसरे नंबर पे इटली का शायद वफ्द था, जिनके मेरा ख्याल 63, हाँ 63 के करीब अफराद उनके भी थे, एक खातून से बात हुई बता रही थी, तो अच्छा था मुजाहरा, तो अच्छा था ये कि अल्लाह करे कि ये काविश कबूल हो, क्योंकि मैं वहां गई थी, मैं अपना दिन पूरा एडजस्ट करके, मेरा जुमे का अपना बराह रास्त मुशायरा होता है, लेकिन यहाँ पे इनकी तरफ से, इन लोगों की तरफ से जब दावत थी, तो ये था कि हमने कहा चलें ठीक है, कश्मीर के लिए आवाज में हम अपनी भी आवाज एक शामिल करते
1: तो
0: हैं।
1: खुद कश्मीरी
0: तो
1: सारे गए या के बाकी लोग जो हैं वो यकजहती के लिए गए?
0: कश्मीरियों का मसला ये है कि कश्मीरी खुद नहीं निकलते, उनको सब कुछ तैयार चाहिए। मुझे मूसा अलैहि सलाम का वो वाकया याद आता है कि जब आपने कहा कि बनी इसराइल चलो हम फिरौन के साथ हमने जंग करनी है और मुकाबले का वक्त आ गया, तो उन्होंने कहा था जो मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाकर जंग करो, जब जीत जाओगे तो हमें बताना हम आ जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने वैसे ही तो उस कौम पर लानत नहीं भेज दी थी ना, कि जिनको हर चीज प्लेट में चाहिए, मनो सलवा सलवा प्लेट में चाहिए, कपड़े बदन पे बड़े होते चाहिए, चश्मा अलग अलग चाहिए, और फिर उनको हीरो भी बनना है। जब तक जो कौम खुद शामिल नहीं होती, आप अपनी छुट्टी को घर में बारबेक्यू पार्टियों के लिए मुख्तस करते हैं, आपके घरों की औरतें शामिल नहीं होती हैं, अब जिस बस में जितने लोग थे, जितने खड़पैंच थे, उनमें से किसी की बीवी शामिल नहीं थी, आप इस बात से अंदाजा लगाएं, और बाकी औरतें अगर शामिल हैं तो ये नहीं हो रहा था ना। अभी 2016 में हम लोग गए थे, मैं अपने 3 बच्चे लेके गई थी, छोटे थे सारे, और हमने वहां पे ब्रसल्स में मुजाहरा किया था पार्लियामेंट के सामने, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि उस वक्त भी हमने ये एहतजाज किया था कि आप लोगों के घर की खवातीन किधर है, आप लोगों की किसी की बेटी नहीं है, किसी की माँ नहीं, किसी की बीवी नहीं, कोई नहीं है, आप लोग लावारिस है सारे क्या? तो उस वक्त भी हमने कहा था, इस वक्त भी 10 साल बाद आज गए, तो 10 साल बाद भी वही कहते हैं ना कि आवे का आवा वैसे ही को वैसा उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बदला, तो फिर मजीद 10 साल और इंतजार करें, फिर देखें फिर 10 साल में क्या आप क्या करेंगे जो अब तक आपने नहीं किया। तो जब तक आपकी नीयतें अच्छी नहीं होंगी, आप खुद पुरखलूस नहीं होंगे कि छुट्टी को घर में बैठकर कश्मीरी बारबेक्यू पार्टियों का, और चलो भी तुम्हारे घर तुसाने कार लाद रखने हैं, तुसाने कार फलाना रखने हैं, तुसाने कार हाइटी रखने हैं, जब वो इस जंगल से नहीं निकलेंगे, वो हांडियां रोटियां तो बाहर निकल आओ, इतना खा खा के 50-50 साल से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यार कितनी हवस है खाने की जो खत्म नहीं होती है, कि जो चरहों से दिल नहीं भरता, जो बिरयानियों से दिल नहीं भरता, जो निकलो यार कुछ प्रैक्टिकल मैदान में आओ। उनकी बुनियादी जो है ना कश्मीरी बहन भाइयों के साथ गिला ये बनता है, उनकी जिंदगी का मेन मकसद है पैसा पैसा पैसा पैसा, बस जितो मर्जी आए, चिट्टा आए काला आए, पैसा आना चाहिए। भैया पैसा आपके नसीब में जितना है अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है, वहां तक आपको खुद पहुंचाएगा। आप पैसा जरूर कमाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिंदगी में कुछ और मकासद भी होते हैं। मरने के बाद मैंने फरिश्ते को जवाब ये नहीं देना कि मैं इतनी कोठियां छोड़ आया, मैं इतने करोड़ ना जेवर छोड़ आया, मैं इतने करोड़ ने प्लाट छोड़ आया, मैं फलाना सियासी टिकट लैके भांजा भतीजा डॉक्टर बना के कुर्सी ते बिठाया। नहीं, जिंदगी के मकासद में आपने इंसानियत की भलाई के लिए क्या काम किया है, ये सवाल का जवाब जिंदगी किन मकासद में गुजारे, किन कामों में। मैं भी इन्हीं कामों में, फजूल कामों में पड़ी हूँ ना, लिखना लिखाना छोड़ो यार, जाके इसी में मैं एक जॉब करके, अगर मैं 2000 यूरो तक 1500 यूरो तक भी कमाती तो मैंने 28 साल इस चीज में लगा दिए तो क्या आज मैं कितने घरों की जाती तौर पर नकद के ऊपर मालिक होती, मैं किराए खा रही होती, मैं ऐश करती, लेकिन मेरे पास क्या होता ये सोचने के लिए कि अगर अभी मेरी जान निकल जाती है तो मैं अल्लाह को क्या कहूंगी, मैं दुनिया में क्या करके आ रही हूँ।
1: नहीं, आपके लिए तो बड़ा आसान था कि आप शायरा हैं, राइटर भी हैं, आप कहती जी मैं फलाम मुशायरे में आ रही हूँ, मेरी रहाइश का बंदोबस्त करें, तो आपको जो गुलाम तो हर जगह मिल जाते हैं।
0: बिल्कुल, अगर मैं ये कहती कि हाँ मिले, लेकिन उसके साथ मुझे जो मखसूस दोस्तियां डालनी पड़ती ना, मखसूस दोस्तियों पे आपको ये रिहाइशें मिलती हैं और आपको पैसे मिलते हैं। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती हूँ कि मैं अपना एक दिन या दो दिन यहाँ से अपना काम रोक कर आ रही हूँ, पर डे मुझे आप इतने पैसे अगर देते हैं, मुझे 100 यूरो पर डे भी अगर आप देते हैं, और देना चाहिए अगर आप किसी को बुलाते हैं तो दूसरे शहरों से दूसरे मुल्क से 100-150 यूरो और सफर का खर्चा दें, उसको रहने के लिए रिहाइश दें, ये अगर दूसरे मुल्क से बुलाया जाता है तो चले 2 दिन के लिए, क्या भी हम 2 दिन या 3 दिन आपको हम ये सहूलत देंगे, उसके बाद आप कयाम करना चाहें तो आप जाती तौर पे करें, तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जाती दौरे पे आ रहा है, उन दिनों में आप प्रोग्राम रखते हैं, अब मैं स्पेन आई हूँ या मैं डेनमार्क में हूँ और आपको पता चलता है कि मुमताज मलिक आ रही है, तो आप मुझे कहते हैं कि चलें बाजी आपके साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो एक और चीज है कि फिर मैं एक अपने विजिट पे हूँ, मैं आपके साथ शामिल हो जाती हूँ। लेकिन अगर आप बुला रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको जरूर अगले बंदे का करना है। यहाँ पता है ग्रुप बाजी पड़ी है। वो किसी ने बड़ा अच्छा जुमला बोला था बहुत साल पहले कि अदब की दुनिया ही बेअदब है। तो अदब की दुनिया में अगर अदब होता ना तो फिर हक भी होता, इंसाफ भी होता, और फिर ये मुतशायर ना होते, गंद ना होते। आज उसको मशहूरी का सबब बना के लोग AI से बना के खरीद खरीद के राइटर्स से किताबें ला के एक एक साल में 10-10 किताबें मार्केट में। अभी एक एक दिन में आप एक किताब बना सकते हो, लेकिन क्या वो आपकी है? अपना बच्चा और सैरोगेसी में बड़ा फर्क होता है। ये सैरोगेसी के बच्चे ला ला कर अपने नाम से लोग फेंक रहे हैं कि लो जी ये मेरा बच्चा है, ये मेरा, ऐसे नहीं होता। आपकी वल्दियत आपकी ही रहेगी। तो यहाँ पे तो अब ये ड्रामा भी शुरू हो गया, पता नहीं क्या मशहूरी लेने के लिए, सिर्फ जिसके पास 4 पैसे हैं वो किसी भी शायर को वहां से हायर करके उसका कलाम खरीद के अपने नाम से उसकी किताब शाया करवा के आ गए जनाब मार्केट में। लेकिन बात ये ना कि जब राजा गफूर बोलेगा उसके अपने अल्फाज हैं तो पता चलेगा कि ये राजा गफूर के अल्फाज हैं। जब मुमताज मलिक बात करेगी, शेर पढ़ेगी या नसर, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे पास कोई पर्चे तो नहीं लिखे हुए, महफिल बदी बात इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास मुताला भी है, मेरे पास तजुर्बा भी है, मेरे पास मुशाहिदा भी है। 28 साल मैंने यहाँ पे झक नहीं मारी, मैंने 28 साल से यहाँ प्रॉपर लगातार काम कर रही हूँ फील्ड के अंदर, लोगों के साथ, फैमिलीज के मसाइल में। काउंसलिंग के लिए औरतें जब बात करती हैं, अपने मसाइल बताती हैं, तो पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। कहीं भी जाएं लोग एतमाद से बात करते हैं। हम उनके नाम पते उछालने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, हम समझते हैं कि अपने तजुर्बात की रोशनी में उनके लिए कुछ अच्छी काउंसलिंग हो सकती है, बात हो सकती है, तो करें। बहुत सारे लोगों के मसले अब तक हल करवाए जिन्होंने, इसलिए कि मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए कि मैंने कोई आपसे ये लेबल लेना है, लेकिन बात यह कि मुझे खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि उस शख्स का एक मसला हल हुआ, आज वो खुश है, मुतमईन है, इत्मीनान से, या उनके बच्चे अपनी जगह पर इत्मीनान से हैं, महफूज हैं, मुझे बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है कि ये जो होती है ना बगैर लेबल के कोई अच्छा काम करने की कोशिश, या कोई आपके हाथों अल्लाह ताला कुछ करवा दे, तो ये खुशी, ये इत्मीनान इस दुनिया से जाने के लिए बहुत होता है, बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़े फखर से अपने बच्चों को कहती हूँ कि जिस वक्त मैं दुनिया से जाऊँ ना तो उस वक्त यकीनन मौत पर हक है, हम सबको वापस जाना है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। 50 साल से ऊपर वैसे भी हमारे पास सिर्फ बोनस टाइम होता है कि हम जितना जी रहे हैं ये एक बोनस है, आप जितना कमा सकते हो कमा लो नेकियां। तो मैं कहती हूँ कि मेरी किताबें जो है वो मेरे लिए कोई ये नहीं कि मैंने लोगों की लेकर अपने नाम से लिखवाई हैं, ये मेरा जेन्युइन काम है, ये मेरा खून जिगर है, ये मेरे तजुर्बात, मुशाहिदात, अल्लाह की अता, इसमें सब कुछ शामिल है। मेरा नातिया कलाम मेरे सीने पर रखकर मेरे हाथ में देना, और मेरी बाकी किताबें आइंदा भी जितनी आए उसकी एक एक कॉपी जरूर मेरी कब्र में मेरे साथ मेरे दाएं बाएं पहलू में रखना, کیونکہ اللہ جب مجھ سے یہ پوچھتا ہے وہ جانتا ہے سب کچھ، لیکن میرے اطمینان کے لیے اس کو میرے ساتھ ضرور دفن کرنا، یہ میرا کام ہے پروردگار، جو تو نے مجھے دیا اس میں سے قلم کی لڑائی میں میں یہ لڑ کے آئی، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا،
1: قلم
0: مجھے
1: کی
0: معاف
1: لڑائی
0: کرنا.
1: ممتاز صاحبہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں جن ممالک میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں کے اسپتال ذمہ دار ہوتے ہیں، ہمارا علاج جو ہے وہ فری ہوتا ہے، کہ کینسر ایک موذی مرض ہے، یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ موذی مرض لگی ہوتی ہے لیکن علاج ہوتا ہے، صحت یاب بھی لوگ ہو جاتے ہیں لیکن موذی مرض ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی یہ موذی مرض پھیلتا جا رہا ہے. جو بھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اس طرح کے اسپتال خود کیوں نہیں بناتے؟
0: بات یہ نا کہ اپنے پلے سے کیوں بنائیں، وہ میں نے کہا نا کہ نیکی بھی کاروبار سمجھ کے کرنی ہے نا، یہ وہ کام کریں گے نا جو لیبل میرا ہونا چاہیے، پیسہ ساری قوم نے دے دیا ٹھیک ہے نا، چاہے ایک ایک روپیہ مان لیں آپ، جب وہ ایک ایک روپیہ پر ساری چیز تیار ہو گئی تو اس پر اس کو قومی ہاسپٹل لکھنا چاہیے نا، قومی اسپتال یا عوام کا ہاسپٹل لکھنا چاہیے، لیکن وہاں لوگ اپنے اما کا ابا کا بیٹے کا بیٹی کا نام چپکا دیتے ہیں، یہ ان کے لیے یادگار، ارے یادگاریں اپنی جیب سے بنتی ہیں بھیا، یادگاریں لوگوں کے پیسے سے نہیں بنتی ہیں، اس قوم کو یہ بات کون سمجھائے، پڑھے لکھے لوگ جو کہتے ہیں میں یہاں سے پڑھا وہاں سے پڑھا، آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آئی، اگر ایک چیز جس پر میں نے محنت نہیں کی، میں نے اس کو پیسے کو کمایا نہیں ہے، وہ پیسہ میری جانب سے کیسے لگ سکتا ہے، میں اپنی ماں کے نام پر ایک اگر ٹرسٹ بناتی ہوں نا تو اس میں میں اپنی جانب سے کوشش کر کے جو میری اپنی کوئی جائیداد ہے کوئی آمدنی ہے کوئی کرائے ہیں میں وقفے میں ڈال دوں کہ بھئی یہ پیسہ یہاں جانا چاہیے، لوگوں کی مدد ہوتی رہے، اس کے بعد کوئی اپنی خوشی سے ڈالتا ہے اس میں اخراجات میں آسانی کے لیے ضرور ڈالے، لیکن بنایا میں نے ہے، اس کے بیچ میں مین خرچہ میرا ہے، ملکیت میری اس لیے تھی کہ میں نے اس کو ڈالا اللہ کے نام کے لیے، لوگوں کے لیے وقف کیا، ہمارے یہاں پیسہ لوگوں کا ہوتا ہے اور مزے عوام کرتے ہیں لیڈرز کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسی پیسے کے ذریعے پورا پورا کنبہ پل رہا ہوتا ہے، پورا کنبہ ارب پتی ہو گیا ہوتا ہے، ارے آپ نے تو موت کے ساتھ زندگی کی ایک لڑائی تھی اس کے نام پر پیسہ اکٹھا کیا، آپ کے بہن بھائی ارب پتی کیسے ہو گئے، سوچئے جتنے کینسر ہسپتال بنے یا اس میں سارا عملہ اپنے گھر کے ہی ڈاکٹرز بھرے ہیں، رشتے دار بھرے ہیں، اس کے بعد ہر ایک کا بینک اکاؤنٹ اس دن کا چیک کریں جب وہ آیا تھا اور آج کا چیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا ان کی تو کوئی یعنی ایک حساب کتاب کی اکاؤنٹبلٹی ہے ہی نہیں، یہ تو جس کا جو دل کرتا ہے یہ اس میں سے نچوڑتا جا رہا ہے، بہتی گنگا ہے جو آتا ہے ہاتھ دھو کے نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میں تو کسی کو حساب کتاب کیوں دوں، میری تو مونچھ کا بال ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے بھیا حساب دو لوگوں کا پیسہ، تمہیں تو اللہ کو بھی حساب دینا ہے، تمہیں دنیا میں بھی حساب دینا ہے، اکاؤنٹیبل کیا گیا ہے تمہیں، مفت میں نہیں ہوتا، آپ مجھے 10 روپے دیں تو میں پابند ہوں نا کہ 10 روپے میں سے میں نے کتنے کی کیا چیز خریدی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ نہیں بھیا میرے کوئی پرچی کوئی نہیں اور رسیدہ کٹو تو سارے رسیدہ کٹو بھائی، یہ کسی ایک کے لیے یا ایک کام کے لیے نہیں ہوتا، رسیدہ کٹو تسی سارے، آپ جس جس محکمے میں ہیں جس جس جگہ پر ہیں جس کام پر آپ کے ہاتھ سے محنت نہیں ہوئی، آپ کی جائیداد خرچ نہیں ہوئی، آپ کا کچھ نہیں، وہ کام آپ پر حرام ہے، وہ رزق آپ پر حرام ہے، اور ہر بندہ حرام کھا کر کہتا ہے اللہ چنگی نہیں نکلی، لانت ہے اس رسک پر جو آپ نے ان کو کھلایا تھا، حرام کمایا نا، چاہے آپ نے ریڑی پہ بیٹھ کے کمایا چاہے آپ نے صدارت کی کرسی پہ بیٹھ کر کمایا، حرام کمایا ہے تو وہ حرام کی طرف ہی جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسے آپ چیلنج نہیں کر سکتے.
1: ممتاز ملک صاحبہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میرے آخری دو سوال ہیں، تو آپ کو پاگل شاعرہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے یا باغی شاعرہ کہا جائے تو بہتر ہے؟
0: نہیں میں باغی، ویسے میرے پاس ہر موضوع ہے، جو مجھے باغی شاعرہ کہے گا نا تو میرا خیال ہے کہ وہ خود گدھا ہوگا، اس لیے کہ اسے پھر مجھے پڑھا ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس امید بھی ہے، اگر میں نا امید ہوتی اور میں پاگل ہوتی تو میں ویسے ہی چلا چلا کے لوگوں کو صرف نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی.
1: میرا مطلب ہے آپ اتنا سچ کیوں بولتی ہیں اس زمانے میں؟
0: پتہ نہیں پیدائشی نا کچھ میرے میں ڈیفیکٹ ہے، کہتے نا پیدائشی خرابیاں خامیاں تو یہ وہ چیز ہے جو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، کسی نے بڑا اچھا مصرعہ کہا تھا کہ پروردگار مجھے بھی منافق کر دے تھوڑا سا، کیونکہ تھوڑے تھوڑے سے منافق تو سبھی ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا مجھے بھی کر دے اگر تجھے پسند ہے تو، मैं यकीन कीजिए मैंने बड़ा बड़ी बार दुआ की, या अल्लाह लोग मुझे कहते हैं ना कि नहीं सच ना बोला करो, और मैंने वाकई सच बोल के हमेशा नुकसान उठाया है। मैं आदत से या फितरत से मजबूर हूँ, मुझे मेरे माँ बाप ने जो आधा सबक दिया था उसने मुझे सारी जिंदगी इसी तरह से पत्थर खिलाए हैं कि मैं कहती थी कि अम्मी ने अबू जी ने ये तो कह दिया सच बोलो, आगे ये कहना भूल गए थे, जो मैं अब अपने बच्चों को कहती हूँ बेटा सच जरूर बोलो, मौका महल वक्त हालात देखकर, जहां देखो बकौल हजरत अली करम अल्लाह वजह के आवाजें ऊंची हैं, शोर ज्यादा है और ना समझी है, तो वहां पे खामोशी इख्तियार करो। दलाइल की कमी है ना, वहां कोई सुनने वाला नहीं है, तो खामोशी इख्तियार करो, अपने फैसले को झूठ भी ना बोलो लेकिन अपने फैसले को वक्त पे छोड़ दो, अपनी बात वहां छोड़कर कि मेरा पॉइंट ये है, इसे वक्त साबित करेगा। और अक्सर आपने देखा सच बोलने वाले इकट्ठे होते हैं, इसीलिए जमहूरियत सबसे बड़ी, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा बुरा निजाम ही जमहूरियत का है, जिसमें गधा और घोड़ा एक जैसा वोट दे रहा है, एक आदमी जिसको अलिफ से बे का पता नहीं है, एक आदमी जिसने उस चीज में सारी जिंदगी गुजार दी है, वो आकर एक प्लेटफॉर्म पे एक जितना एक बराबर कीमत का जब वोट डाल रहा है, आप सोचिए कि उस मुल्क के साथ इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। आपको कख पता नहीं है लेकिन आप एक सबसे बड़े जानने वाले के लिए उसके बराबर का वोट कास्ट कर रहे हैं। जमहूरियत है, जमहूरियत जिंदगी के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी का नाम है। लोगों की तादाद ज्यादा हो जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनमें अकल भी उतनी है। वहां पे रंग रंग के लोग होंगे, रंग रंग की सोच होगी, आपको किस बात के लिए राय चाहिए, आपको उस नौयत के लोगों को चुनना पड़ेगा, उस तालीमी मयार को या उस हैसियत के लोगों को चुनना पड़ेगा कि वो लोग उस बारे में वोट कर सकें कि इस मुल्क को या इस निजाम को या किसी भी सिस्टम को कैसे चलाना है। तो मुझे आप पागल कहें या बागी कहें लेकिन मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ। 28 साल से बगैर किसी हासिल वसूल के अपने मियाँ की कमाई पर, थोड़ी हो ज्यादा हो, अपना घर चलाने वाली, 3 बच्चे पालने वाली, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मास्टर्स किया उन्होंने, अच्छी जगह पे जॉब्स कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक तो मैं ये कहती हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि उनमें ये वाली बुराई है या ऐब है, जो मैं उनको तरबियत का जमाना था कर सकती थी, अब तो माशाल्लाह वो इंडिपेंडेंट एक अच्छी जिंदगियां गुजार रहे हैं। मैं समझती हूँ मैं बहुत पुरउम्मीद शायरा हूँ, मैं सच इसलिए नहीं लिखती कि मुझे अपने लोगों में ऐब डालना है, मैं वो हूँ जिसको अपने मुल्क से हद से ज्यादा प्यार है, अपने लोगों से प्यार है। और जब आपको किसी से प्यार होता है ना तो आप कहते हैं उसमें कोई बुराई ना हो, उसका हर ऐब चुन चुन कर निकाल दो, उसकी हर गलती को निकालो, इसको साफ सुथरा करो। जब मेरे साथ कोई दूसरी कम्युनिटी, जब कोई दूसरे मुल्क का शख्स बात करे ना, या दूसरे मजहब का बात करे, तो वो तारीफ करे, वाह तुम्हारी कम्युनिटी की क्या बात है, वाह तुम्हारे लोग कितने अच्छे हैं, इस उम्मीद के ऊपर मैं वो ऐप निकालती हूँ। कहते ना घर से चांटा पड़े इतनी तकलीफ नहीं देता, जब बाहर वाला चांटा मारता ना बड़ी दर्द होती है, फिर बहुत दुखती है। मैं उस दुखन से, उस चोट से बचाने के लिए मैं अपने मुआशरे का ऑपरेशन कह लें या सफाया कह लें या क्लीन अप कह लें, ये मैं खुद करती हूँ, मैंने ये झाड़ू खुद उठा रखी है। आप मुझे जमादार नहीं कह सकते हैं अपने मुआशरे की, कि मैं इसके गंद को साफ करने की कोशिश करती हूँ, खुलकर बोलती हूँ। टिकटॉक के ऊपर मेरे जितने भी इस वक्त कॉलम्स आते हैं, वॉइस कॉलम्स हैं, जरूर सुनिए, मैं टैबू मौजूदात को उठाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी में उन पर बात होनी चाहिए और बुराई को बुराई समझें। मैं गंद को साफ करने के लिए, अब गंद को मैं गंद ही ना कहूँ तो मैं साफ किसको करूंगी, मैं क्या कहूँ आकर कि मैं जनाब संगमरमर के ऊपर झाड़ू लगा रही हूँ, ऐसे तो नहीं होता ना, तो ऑलरेडी साफ है। अगर आपने संगमरमर पे भी कचरा फेंक दिया, कालक फेंक दिया, मैं उसको रगड़ रही हूँ, मैं उसको साफ कर रही हूँ कि मेरा मुआशरा, मैं दुनिया से जाते जाते, अब हम वापसी के जमाने में है ना, 50 साल से ऊपर हो गया, आप वापसी के सफर पे होते हैं, मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरी जुबान, मेरा कलम, मेरे होश हवास मेरे साथ हैं, अल्लाह ताला हम सबको चलता फिरता रखे, और चलते फिरते ही बगैर किसी बेड पे पड़े बेड की बीमारी दी, अल्लाह ताला हमें अपने पास इज्जत के साथ बुलाए, ईमान के साथ बुलाए, कि ये एक जिम्मेदारी शायद अल्लाह ने मेरे हिस्से में लिखी है, और मैं वो खुश नसीब हूँ, मुझे वो भरे पेट सुलाता है। मैं एक कमाई, मैंने कहा ना मैं वो नहीं हूँ जो ब्रांड पहन पहन के पागल हो जाती है, फलाना जनाब फलाने पार्लरों पे जाना है फलानी, मैंने अपनी जिंदगी में ब्रांड्स नहीं पाले, इसलिए मैं बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे कहती हूँ मैं सबसे सस्ते कपड़े पहनती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं कहती हूँ, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी ना कि घड़ी अगर मैंने 1 करोड़ की बांधी है वो भी मुझे वक्त बताती है, और घड़ी अगर मैं 100 रुपए की बांधता हूँ तो भी वो वक्त ही बताती है। जब मुझे ये बात समझ आई तो मैंने अपना माल खैरात कर दिया। यानी एक बहुत बड़ा आदमी जिसने ये बात की कि मुझे ये बात बड़ी देर से समझ आई कि मैं 5 रुपए की शर्ट पहन के फिर रहा हूं, वो भी मेरा वजन ढांकती है, और अगर मैं 5,000 की पहन के, $5,000 की पहन के फिर रहा हूं, उसे भी मेरा वजन ही ढांपना है ना। तो मैं इतना पैसा किसी और जगह किसी ऐसे काम में जो कि मेरे लिए सदका जारिया बन सकता है, खर्च करके मुतमईन अच्छी नींद सो सकता हूँ, तो मैं क्यों अपने जिस्म पे लाद लाद की अपने लिए पागल हो रहा हूँ, घड़ी इतने की, ये मेरा परफ्यूम इतने का, ये मेरा जोड़ा इतने का। ये सब घटिया बातें, ये सब आरजी बातें हैं। मिट्टी में मेरा बदन जाना है, मेरे बदन को अंदर जो रूह निकाली जाएगी ना, उस रूह को इतना पाकिजा होना चाहिए कि जब वो फरिश्तों के आगे खड़ी हो तो वो खुशी से कह सके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, परवरदिगार जो तूने मेरे जिम्मे काम लगाए थे कोशिश की है कि उसको पूरा कर सकूं। हो सकता है बड़ी जगह कोताहियां हुई होंगी, सुस्ती हुई होगी, कमी भी हुई होगी, लेकिन जितनी मेरी समझ थी, अकल जो तूने मुझे दी, जितनी मेरे अंदर थी समझ बूझ, मैंने उतना किया, अल्लाह उसे कबूल कर ले, तो बस राजा भाई जिंदगी यहीं तक।
1: आपका बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, हमें बड़ा अच्छा फिक्रा लगा कि मैं वो हूँ जो मैं हूँ। और उसके बाद माशाल्लाह आपकी अपनी जो शायरी की किताबें कुतुब भी आ चुकी हैं, बोलती भी बोलते हैं, अल्लाह ताला ने आपको ज़बान भी दी है, स्पीकिंग पावर भी दी है, वॉइस भी आपकी अच्छी है, तो आप कह रही हैं ना आपको जो एहसास कमतरी नहीं है, यही सबसे बड़ी आपकी जीत है। बाकी वो जो चेहरे हमें मिलते हैं ना यहाँ आते जाते हम देखते रहते हैं, वो कहते हैं जो हम हैं वो होते नहीं है, आपने कहा मैं वो हूँ जो मैं हूँ।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो हूँ जेन्युइन हूँ, मैं जो बात करती हूँ दिल से करती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए कोताही हो जाए मैं भरे मजमे में हाथ भी बांध के सॉरी कर सकती हूँ, माजरत भी कर सकती हूँ, वो नहीं हूँ कि मजमे में किसी को जलील कर दो और कोने में वगैरह के पाँव पकड़ लो, नहीं मैं वो नहीं हूँ। मैं वो हूँ कि अगर कोई आप मुझे एहसास दिला दें और साबित करें कि नहीं मुमताज जी आपकी ये बात जो थी उससे मैं हर्ट हुआ हूँ या मुझे थोड़ा बुरा लगा है, तो मैं कहूंगी राजा भाई मैं 10 लाख के मजमे में खड़े होकर कहूंगी कि राजा भाई माफ कर दीजिए फलानी बात का ये मतलब नहीं था, या मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, अगर आपको दुख हुआ है तो मैं हाथ बांध के आपसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि दुनिया में माजत बहुत आसान है, बहुत बेहतर है, बजाय कि ये बोझ लाद लाद कर आखिरत के मैदान में खड़ा होना। वो बोझ आप कभी ख्वाब में एक मिनट के लिए सोचें कि आप दुनिया से जा चुके हैं और आप वहां खड़े होकर हिसाब दे रही, ये बहुत मुश्किल काम है, ये सोचते ही आपको अकल आ जाएगी। इसलिए मुझे दुनिया की माजरत कबूल है, मैं जेन्युइन हूँ जो हूँ जैसी हूँ, मेरा जितना काम है ये मेरा अपना है, इसमें किसी की कोई फंडिंग शामिल नहीं है, मैंने आज तक जो किया किसी की फंडिंग के बगैर 2018 से माशाल्लाह हमारी 12 अप्रैल 2018 से राहिर द फ्रांस की तंजीम मैं यहाँ पे चला रही हूँ, मेरे साथ मेरी दोस्त है नायब सदर हमारे साथ हैं, सॉरी शमीम खान साहिबा हैं, फिर उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजर हैं हमारे साथ रुई बानो साहिबा, तब से जुड़े हुए हैं हम लोग साथ साथ में, मिलकर हम लोगों ने इस तंजीम का नाम रखा था, रजिस्टर तंजीम है यहाँ पर, लेकिन हमने मैरी से भी कभी कोई पैसा नहीं लिया, कोई देना नहीं लिया, अपने सर पर जितना काम किया, हमने किसी मर्द की जेब खाली नहीं कराई कि वो हमारी सरपरस्ती करे, बड़े अच्छे अच्छे बरादरान हैं जो कि कहते हैं कि हम आपको करते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं जब तक हम कर सकते हैं ना हम खुद करेंगे, हाँ जब कभी जरूरत हुई तो आप सारे हमारे बहन भाई हैं जरूर हम आपको आवाज देंगे और ऑनर भी देंगे, लेकिन ये कि ये एक सच का सफर है और मुश्किल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है नामुमकिन कुछ नहीं होता, अगर आप एक रास्ते पे अल्लाह का नाम लेके चलते हैं तो अल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते पैदा करता है, आपको कंधे फलांगने की जरूरत नहीं होती है कि इसके कंधे से उसके कंधे पर छलांग लगाऊं उससे उसके, और अगर मैं बिजनेसमैन हूं मेरे पास बहुत पैसा है तो लिफाफे बना बना के और बड़े बड़े बुके और बड़े बड़े तोहफे तहाइफ के एक बंडल ले जाकर मैं अगले के मुंह पर ओहदा बांध दूं, कोई अवार्ड बांध दूं और मैं उसको अपना कुत्ता बना लूं कि कहूं ना मैं कहूं तो भोंको और मैं कहूं तो काटो, मैं किसी का कुत्ता नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काटती भी अपनी मर्जी से हूं और मैं भोंकती भी अपनी मर्जी से हूं, इसलिए अगर कुत्ता बनना है तो अल्लाह के कुत्ते बनो, जो अल्लाह ताला ने आपको भौंकने और काटने का जहां जहां हुक्म दिया ना सिर्फ अल्लाह के कुत्ते बनोगे तो इज्जत रहेगी दुनिया और आखिरत में भी, लेकिन अगर आप दूसरों की रोटी के ऊपर के मैं डिनर यहाँ कर लूंगा लंच यहाँ कर लूंगा और अल्फाज उसके मेरे मुंह में होंगे और मैं बात करूंगी, नहीं नहीं चाहिए ऐसा, ना लंच चाहिए ना डिनर, उससे अच्छा मैं रोजा रख लूं, अगर कभी ऐसी बात आ जाए तो उससे कितना अच्छा कि मैं रोजा रख लूं, मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहेगा।
1: मुमताज़ साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया, आपका लफ्स बुलफ्स जो है वो ऑन एयर गया, کوئی اس میں کانٹ چانٹ نہیں ہے، جیسا جو کچھ آپ نے کہا وہی کچھ نشر ہوا، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
0: بہت شکریہ جناب، بہت عرصے کے بعد آپ سے بات ہوئی، اور ظاہر ہے میں بولنے والا بندہ ہوں، میرے پاس اتنے 28 سال میں اور بلکہ زندگی کے 50 سالوں کا اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ مجھے کئی بار احساس ہوتا ہے میں نے اس کو بولنے نہیں دیا، لیکن میرے پاس اتنی باتیں اس لیے ہوتی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ پتہ نہیں کون سی بات آخری ہوتی ہے، کون سی ملاقات آخری ہوتی ہے، تو جو کچھ کہیں کسی تک نہیں پہنچا وہ پیغام ضرور اگلے تک پہنچ جائے. میرے بولنے کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے باتیں کرنے کا شوق، شوق ہونا، شوق میں لوگ چولیں بھی مارتے ہیں، بڑی بڑی بونگیاں مارتے ہیں. میں کہیں بھی کسی بھی میرے انٹرویو میں آپ بونگیاں اور چولے نہیں دیکھیں گے، کوئی ٹو دی پوائنٹ کسی موضوع کے اوپر ایک نہ ایک پیغام ضرور ہوتا ہے آپ کے لیے، اگر آپ لوگوں کے کام آ جاتا ہے یا آپ لوگوں کی سمجھ تک
1: اصلاح کی شکل میں ہوتا ہے، آپ کا پیغام اصلاح کی شکل میں ہوتا ہے.
0: بے شک اگر وہ آپ کے دماغ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ میرا فرض ادا ہو جاتا ہے. میں بار بار کہتی ہوں میں عالمہ نہیں ہوں، فاضلہ نہیں ہوں، قاریہ نہیں ہوں. ہاں میں نے بہت ریڈنگ کی ہے، میں نے اسلامی اپنے پورے اسلامک سسٹم کو پڑھا ہوا ہے، سیرت النبی کے اوپر پڑھا ہوا ہے، لیکن میرے پاس باقاعدہ وہاں کی کوئی ڈگریاں نہیں ہیں، ڈپلومے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے کسی باقاعدہ مذہبی ادارے جوائن کر کے یا یونیورسٹی کی ڈگری نہیں، لیکن میرے پاس مطالعہ ہے اور بے انتہا مطالعہ ہے. اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں میں نے خود لوگوں کے اندر کام کیا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہے لیکن عورت کتنی پاورفل ہے یہ بھی میں جانتی ہوں. اگر عورت اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے نا، اور عورت ایک سٹینڈ لے لیتی ہے کہ مجھے یہاں تک بات کرنی ہے، اس سے آگے نہیں کرنی ہے. میرے لیے سب بھائی ہیں، بیٹے ہیں، نہ تو مجھے کہیں بات کرتے ہوئے کسی کے ساتھ لہرانے کی ضرورت ہے، تعلقات بنانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی کے پیسے چاہیے، نہ ٹکٹ چاہیے. ہاں کوئی مجھے ایک ملک سے باہر بلائے گا تو وہ مجھے میرے لیے اتنا ہی، دو دن تین دن جو پروگرام ہے اس کا مجھے کہیں نہ کہیں قیام کا بھی دے گا اور مجھے ٹکٹ دے گا تو ضرور ان شاء اللہ ہم پروگرام میں شامل ہوں گے. لیکن اگر وہ صرف دوستیوں پہ اور ناز برداریوں پہ اور ان کے ساتھ کچھ تعلقات پہ کرے گا تو میرا یہ نہ تو مقصد ہے، نہ تو مجھے میاں ڈھونڈنا ہے، نہ مجھے کوئی بوائے فرینڈ ڈھونڈنا ہے، نہ مجھے کوئی یارانے ڈالنے ہیں. میں جہاں ہوں بہت خوش ہوں الحمدللہ، وہ ایک ہی شوہر کافی ہے، جو ایک ہی بات جو ہم نے کیا الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزری ہے، بچے بھی اچھے ہیں. مجھے پیسے کی مجبوری نہیں کہ میں کہیں جا نہیں سکتی، لیکن میں اپنے کاموں کے ٹائم میں وقت نکال کر اگر کہیں نکلتی ہوں تو پھر وہ دوسرا بندہ جو اتنا ریسپانسبل ہونا چاہیے جو آپ کو انوائٹ کر رہا ہے. اور سب میرے لیے بیٹے ہیں، بھائی ہیں. اب تو زندگی میں کبھی کوئی سوچا ہی نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی تعلق ہوتا بھی ہے یا کوئی ہو بھی سکتا ہے، اس لیے میں سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک خواہشات بھیجتی ہوں. جو بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ پاکستانی ہیں یا آپ مسلمان ہیں، تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، اپنے دین کو سمجھیں، مولویوں کے پیچھے نہ لگیں، عالموں کے پیچھے نہ لگیں. اس صدی کا عالم اور مولوی دونوں صرف جہنم میں لے کر جائے گا آپ کو، وہ صرف حلوے بانٹتے ہیں، حلوہ خریدنے کے لیے انہوں نے بہت ڈرامے بازیاں کی ہیں. دین کو مذاق نہ سمجھیں، قرآن پاک کا سادہ سا ترجمہ پڑھیں، وہ آپ کو بہت کچھ سمجھائے گا. قرآن معجزہ اسی لیے کہا جاتا ہے، جب آپ کھولتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کی، ذہن کی گرہیں بھی کھولتا ہے. اسی طرح سے سیرت النبی سب سے پرانی مستند سیرت النبی، صرف صحیح بخاری صحیح مسلم، بس اس کے آگے آپ کسی کتاب تک مت جائیں. یہ سمپل سا ایک طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے دین کو خود پڑھیں، حقوق و فرائض کو پڑھیں. جو آپ کے ذہن سے یا عملی زندگی کی لاجک سے ٹکراتا ہے وہ ہمارا دین نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اسلام دین فطرت ہے، سیتو یہ مکمل ہو گیا وہاں پر. فطرت سے ٹکرانے والی ہر چیز وہ آپ کا دین نہیں ہے. تو آپ یہ حلوہ خوروں کے پیچھے نہ لگیں، اپنے دین کو خود تھوڑا بہت پڑھیں. اگر آپ نے دو چار جماعتیں پڑھی ہیں، آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں نا، تو تب بھی آپ اپنا دین سمجھ سکتے ہیں. اور اپنی سیاست بازیوں میں یہ سوچیں کہ ملک کا فائدہ، کسی بھی سیاسی جماعت کو فالو کرنے سے پہلے ملک کا فائدہ، عوام کا فائدہ دیکھیں. جذباتی نعروں میں نہ بہیں، کوئی بھی جماعت ہو، الف بے پے کوئی بھی جماعت ہو، جذباتی نعروں میں نہ بہیں، عملی زندگی میں آئیں.
1: عملی زندگی میں آئیں. ممتاز صاحبہ، بڑا آپ سے دل کرتا ہے بات کرنے کا، وقت اجازت نہیں دیتا، اور آج بھی لگتا ہے اتنے سالوں کے بعد بھی آپ کے اندر جو ہے وہ پاکستان پاکستان بنا ہوا ہے.
0: الحمدللہ جی، پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان زندہ باد ہے. میں کہتی ہوں میرا ملک ہے پاکستان، یعنی مطلب ہے پاک لوگوں کی سرزمین. بس ہماری عوام پاک ہو جائے، ہماری عوام کو پاک بن کے رہنا آ جائے، اور جو عوام میں سارے شامل ہیں، ہمارے لیڈر سے لے کر عوام تک، پاکستانیوں کو اگر پاکستان کی سمجھ آ گئی نا कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। हम नारे लगाते पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इला इल्लल्ला, वो एक जज्बाती नारा है। पाकिस्तान का नाम रखने वाले ने सोचा था यहाँ पाक लोग रहा करेंगे, ये पाक लोगों की सरजमीन होगी, तो खुद को पाक करें, मैं अपने आप को पाक करूं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। आज दुनिया में जहां पे पाकिस्तान बैरूनी तौर पर हैसियत में एक मजबूत जगह पे खड़ा है, वहां जरूरत है अपनी पाक फौज का भी साथ दें, उसके साथ शाना बशाना खड़े ले। जो लोग अपनी फौज के खिलाफ बात करते ना, फिलिस्तीन को देखें, वो जाकर बाकी ममालिक को देखें, शाम को देखें, दूसरे मुल्कों को देखकर सबक हासिल करें कि किस तरह से तबाही आपके दरवाजे पे खड़ी होती है जब आप अपनी फौज के बारे में मजाक करते हैं। और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे जनाब, मेरी बहुत सारी दुआएं। फ्रांस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान की तकलीफों से मुझे तकलीफ होती है, लेकिन फ्रांस में मुझे जो इंसानी आजादी हासिल हुई, जो इज्जत, जो वकार मुझे इस मुल्क ने दिया, रोजगार दिया, कमाने के मौके दिए, वो आजादी दी कि रात के 2 बजे मैं अकेली सफर कर सकती हूँ, एक बॉर्डर से लेकर दूसरे बॉर्डर तक, किसी ने कभी मुझे घूर कर नहीं देखा। अगर किसी ने देखा तो इतनी इज्जत से तारीफ की, और मुझे उनकी तारीफ अच्छा लगता है। ये नहीं पाकिस्तानियों की तरह घूम कर ठरंग झाड़ कर, ओए होए माशाल्लाह इंशाल्लाह कितने चले हो, ये जो बकवास आप करते हैं ना, तो आपको ये नहीं पता होता कि आपकी अपनी माँ बहन बेटी घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं रही, क्योंकि आप जिससे लफंगे बाहर उसका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। अपने आप को अच्छा मर्द बनाइए। अल्लाह कहता है अच्छा मर्द कौन सा होता है, जो अपनी नजरें झुका लेता है। मैं सामने वाले को कहता हूँ फलानी औरत के कपड़े अच्छे नहीं, तो क्यों तुमने नजरें क्यों नहीं झुकाई, तुमने क्यों देखा उसको गौर से, यानी तुम तो खुद गंदे थे। तो इस तरह जनाब बस फ्रांस जिंदाबाद, जिसने मुझे सर उठा के जीने का हौसला दिया, बात करने के मौके दिए, और जब मेरा काम उनके सामने जाता है तो यकीन कीजिए जितनी इज्जत वो लोग मुझे देते हैं ना, हालांकि मैं अपनी कम्युनिटी में अपनी जुबान में काम करती हूँ, लेकिन जितनी वो इज्जत और ताजीम मुझे देते हैं, मैं उनका कोई नेमुल बदल उनको नहीं दे सकती सिवाय शुक्रिया का।
1: इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में फिर आप शामिल होंगे।
0: इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सबके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह हाफिज।
1: सामान नाज़रीन, ये थी मुमताज़ मलिक साहिबा, जिनकी आपने बातें सुनी, शायरी की बातें सुनी, उनकी सोच को आपने देखा। बोल्ड बोलती हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करती हैं, कानून कायदे का एहतराम करती हैं, अपने मुल्क से उन्हें मोहब्बत है, जहां फ्रांस में रहती हैं, पाकिस्तान की जाए जहां जाए पैदाइश है उस मुल्क की भी इज़्ज़त करती हैं, अपनी पाक फ़ौज की भी इज़्ज़त करती हैं, तो यही हमें दीन भी सिखाता है। तो समय नाज़रीन, हम चूँकि इंफॉर्मेशन के लिए प्रोग्राम पेश करते हैं और हमारा किसी के साथ मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. جس طرح صبح ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے اور مہمانوں کو ٹائم ہوتا ہے, ہر آدمی کا چھٹی کا دن ہے, ٹائم فکس ہوتا ہے, ہر آدمی نے اپنے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ بھی جانا آنا ہوتا ہے, شاپنگ کرنی ہوتی ہے, تو وقت کی پابندی جو ہے وہ بہت لازم ہونی چاہیے اور ہمیں ثبوت دینا چاہیے کہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ وہ شخصیت ہے جو سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر, سٹی کونسلر اور سیاستدان ہیں, تجزیہ بھی کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. میری مراد ہے ملک سکندر صدیق, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جناب راجہ صاحب بہت بہت شکریہ, السلام علیکم اور تمام سننے والے ان کو میری طرف سے پیار بھرا سلام.
0: وعلیکم السلام سکندر, موسم بھی اچھا ہے, بادل بھی ہیں, دھوپ بھی ہے, پتے بھی پیلے پڑ گئے ہیں اور سیاست بھی اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیلی پڑتی جا رہی ہے. بجٹ بھی آ گیا ہے, پاس بھی ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک چیزیں اس بجٹ کا پھل نہیں مل رہا.
1: یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس وقت ڈنمارک میں جو ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے وہ واقعی ایسے لگتا ہے کہ جس طرح کے گرمیاں ختم ہو رہی ہے اور اب ہم اپنے افتاؤ کی طرف جا رہے ہیں.
0: سکندر, آپ واقعی ہی سیاستدان ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں, آپ نے اپنے پارٹی کا مینڈیٹ ضائع ہونے نہیں دیا.
1: دیکھیں یہ بہت ضروری ہے بات سمجھنی کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ ہم نے اس الیکشن میں جو کمیون کے الیکشن ہوئے تھے اس میں ہم نے ہسٹری قائم کی ہے. ہسٹری ہم نے ایسے قائم کی ہے کہ 30 ایئرز میں یہ پہلی بار ہوا ہے کوپن ہیگن میں, مور دین 30 ایئرز میں, کہ ایک ایسی پارٹی جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے اس نے کوپن ہیگن میں اپنی سیٹ نکالی ہو, اور یہ 30 سال میں کبھی نہیں ہوا. کیونکہ عام طور پہ یہاں پہ سیٹ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اگرچہ آپ اسٹیبلش پارٹیز کا حصہ نہ ہو اور وہ اسٹیبلش پارٹیز جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ممبر نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو فارمر پرائم منسٹر اور اس وقت موجودہ جو فارن منسٹر ہیں لاس لوئے کے, ان کی پارٹی نہیں نکال سکی. اسی طرح انگا سٹوئپیا جو ہے جو فارمر منسٹر اور اس وقت پارٹی لیڈر, وہ اپنی پارٹی ان کی نہیں نکال سکی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک جیت اور کامیابی تھی کہ ہم نے اس الیکشن میں یہ سیٹ نکالی. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمیں یہ پتا تھا کیونکہ ہم ایک نئی پارٹی ہیں کہ جس میں یہ ظاہر بات ہے میں بانی میں سے ہوں, میں ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں, تو میں اس پارٹی کی, اس ہماری اپنی پارٹی کی بڑی پروفائل ہوں. تو ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ہم اگر الیکشن میں نہیں لڑوں گا تو ہماری یہ سیٹ نہیں نکل سکتی, یہ بہرحال مشکل سے نکلے گی. تو الحمدللہ ہمیں ہماری وہ سیٹ نکلی. اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ہم نے جب ہمیشہ کوشش اپنی کی کہ حق جو ہے نا وہ بولیں. مجھے اکثر لوگ کہتے بھی ہیں, چاہنے والے بھی کہتے ہیں, یار یہ آپ زائنسٹوں کے خلاف, اسرائیل کے خلاف مت بولا کریں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی لابی اسٹرانگ ہے اور پھر یہ سزا دیں گے اور آپ کو یہ سزا دے رہے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں جب قرآن پاک کی بحرمتی ہوئی, اس وقت ڈنمارک میں پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو قرآن پاک کی بحرمتی کو روکنے کے لیے بل پیش کرتا. میں نے ڈرافٹ کروایا, میں نے پیش کیا, میں نے فلور پہ کھڑے ہو کے بات کی. اسی طرح جب نریندر مودی صاحب یہاں پہ آئے تو سب چپ تھے, یہ جتنے بھی اسٹیبلش پارٹیز ہیں ان کے اندر جتنے بھی یہ لوگ ہیں سب چپ تھے, کوئی نہیں بولا. ہم نے پروٹیسٹ کیا سیکرٹریٹ کے باہر, ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ پرائم منسٹر کو کیا کہتے ہیں کراس کوشچننگ کی, ہم نے نریندر مودی کی جتنی بھی گجرات سے جو اس نے جو مسلمانوں کا قتل عام کیا وہاں سے آر ایس ایس کی سٹوری بتا کے کشمیر لے جا کے ہم نے اس کا کیا. وہاں پہ پارلیمنٹ میں کوئی نہیں بولتا تھا جب ڈنمارک کی اور انڈیا کی گرین ڈیل ہوئی ہے جس میں ہم نے پریشر ڈالا, جس وجہ سے ہماری فورن منسٹر کے ساتھ اس کی آفس میں ملاقات ہوتی تھی, وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے کشمیر کے اور انڈیا کے حوالے سے ہم انڈیا پہ کیا پریشر ڈال رہے ہیں. میں نے ہمیشہ وہ فائٹ کی, ہمیشہ وہ فائٹ لی जो हक मैं समझता था, यहाँ पे डेनमार्क में पासपोर्ट के ऊपर बात हुई, हमने बात की, यहाँ पे रेसिज्म के ऊपर बात की, इससे पहले उस लेवल पे कोई बात नहीं करता था। हम पार्लियामेंट में गए, हमने एंटी रेसिज्म का, यानी कि जो रेसिज्म की जो कि जो दवा है एंटी रेसिज्म, उसका हमने एक एक एजेंडा खोला, उसका हमने एक एजेंडा हम लाए इस पब्लिक ओपिनियन में, हमने इस पर भरपूर काम किया। इस जिस वजह से हमने जब उस वक्त की जो जो सालाना जो फिनेंस लॉ थी, हुकूमत का जो बजट था, उसमें हमने इसको एक मेन टॉपिक के तौर पे सामने रखा। आज वो एक आम बात होगी, आज वो उस पर अब काम हो रहा है। हमने हमेशा राजा साहब हक पे बात की, हक पे बोले, अपने लोगों के लिए बोले, और इसकी हमें आज सजा मिल रही है। और आप देखें कि हम जब ये कत्लेआम हुआ है, जब इन्होंने,
2: मैं
1: बेटा मैं आता हूँ एक सेकंड, और तो उस नी जी सॉरी सॉरी, संडे का दिन है, बच्चे घर पे हैं, तो जो है ना, बच्चे भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो भी टाइम मांगते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि इस वक्त जो जेनोसाइड हुआ है गजा में, आप मुझे बताएं, है और कोई माइकल लाल जो इसके ऊपर इस तरह बोला हो? आप लोग जो अपने बंद कमरों में घरों के अंदर बैठ के बात करते हैं, है कोई माइकल लाल जिसने ये डेनमार्क की टीवी पे जाके ये बात की हो? मैंने तो इनकी लॉबी को एक्सपोज किया ना यहाँ पे, आप देखें कि है कोई। और मैं अभी पिछले दिनों डेडलाइन में गया हुआ था, तो यहाँ का मेन बड़ा डीआर पे प्रोग्राम होता है, उस पे मैंने कहा कि इनकी जो लॉबी है यहाँ पे स्ट्रांग काम करती है, मैंने उसके बहुत सारे हिंट्स दिए, प्रूफ दिए, है कोई और जो बोले? फिर जाहिर बात है ये लॉबी स्ट्रांग है। अब आप देखें कि मेड फॉर एक्शन जो है, उसने अपने मिंक मार दिए गैर कानूनी तौर पे, उसको रिस कार्ड के सामने खड़ा होना था, खड़ा होना था, तो वो वहां पे क्या कहते हैं, मतलब कहने का मकसद ये कि अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर है, उसे किसी ने नहीं हटाया। इसी तरह जो इंगा स्टॉयपे थी, उसने गैर कानूनी तौर पे, मतलब उसने तो जो स्टाफ लॉ है उसको की पामाली की, आज फिर वो पार्लियामेंट में वो बैठी हुई है। इसी तरह बहुत सारी मिसालें आपके, कभी तो किसी सियासतदान को कुछ नहीं किया। और हमारे यहाँ पे जब मैंने इसराइल के खिलाफ बोला, जब जायनिस्टों के खिलाफ बोला, जब हमने यहाँ पे नारा लगाया कि डेनमार्क की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि इसराइल जो है वो एज अ स्टेट एक इलीगल स्टेट है, टेरर स्टेट है, इसको खत्म किया जाए, उसके बाद इन्होंने एक मामूली टेक्निकलिटी पे मुझे अनसीट करने का फैसला कर दिया। और इसके बहुत सारे प्रूफ हैं, सबसे बड़ी प्रूफ तो ये है कि इवन अभी भी अनसीट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सीट्स तो हमसे ना ले सके, सीट तो वो हमसे ना ले सके, वो पार्टी के पास है, अशम जो है उस पर अब है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अशम बहुत अच्छे तरीके से इस सीट को यूटिलाइज करेगा और पार्टी की जो पॉलिसीज है उसके तहत बेहतरीन काम करेगा, अच्छा काबिल लड़का है। तो बाद में ये कर रहा था कि अब आप देखें कि इन्होंने जस्टिस मिनिस्ट्री से पूछा, इन्होंने बहुत जगहों से प्रेशर डलवाया और कहा कि भाई किसी ना किसी तरीके से इसके ऊपर जो है मजीद जो है इसकी तनख्वाह वापस ली जाए या इसके ऊपर जो है कोई चार्ज लगाए जाए। हर तरफ से यही बात आ रही है कि भाई जब इसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया, ये तो एक सीपीआर के भाई इसकी एड्रेस कहाँ पे है, ये तो मामूली चीज है, इसमें तो क्रिमिनल लॉस के हवाले से कुछ कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद डेनिश पीपल पार्टी और ये जो राइट विंग प्रो इसराइली पार्टीज हैं, ये प्रेशर डाल रही हैं कम्यून पे कि नहीं, सिकंदर की तनख्वाह भी वापस ली जाए, और हम मानी के यानी कि हम एज अ सियासतदान ये डिमांड करते हैं कम्यून से कि वो इसके तहकीकात करे मजीद, जबकि कम्यून ने 11 महीने तहकीकात किया और कहते हैं कि सिर्फ एड्रेस की बात है, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर आपको तफसीलन बताना शुरू कर दूं, ये भी मैं कुछ दिनों में मजीद इसको डेनिश प्रेस में भी खोलूंगा, कि इसराइल मुल्क का एम्बेसडर, जब ये केस कुछ अरसा पहले ही शुरू हुआ है, तो ये गॉल हाउस में जो डेनिश पीपल पार्टी ने ये सवाल जवाब कर रही है, बिल पेश कर रही है, उसकी मीटिंग हुई है डेनिश पीपल पार्टी के साथ, इसका हम अभी सबूत देंगे। इसराइल के एम्बेसडर का नहीं तो कोपनहेगन कम्यून में क्या काम है? हमें पता है कि उसकी कोपनहेगन टाउन हॉल के अंदर मीटिंग हुई है, डेनिश पीपल पार्टी के साथ मीटिंग हुई है, उसका क्या काम है? अभी ये बहुत सारी बातें
0: तो क्या
1: निकलेंगी
0: ये
1: अभी,
0: कानूनी तौर पर अंदर दाखिल नहीं हो सकते टाउन हॉल के अंदर?
1: नहीं लेकिन दाखिल तो हो सकते हैं, लेकिन इनका टाउन हॉल में क्या काम है? अम्बेसडर जो है उसका एक टाउन हॉल के अंदर क्या काम है? और फिर उसी मेंबर के साथ जो आगे आगे है इस वक्त कि नहीं ये भी किया जाए, इसकी तनख्वाह भी वापस लीजिए। देखिए मैंने 9 महीने वहां पे काम किया है, मैंने जो 9 महीने जिस तरह सारे काउंसलर होते हैं उनके उन्हें तनख्वाह मिलती है, मैं अक्सर ये यहाँ रेडियो में बता चुका हूँ कि मुझे वो तकरीबन 9,000 करोड़ महीने की तनख्वाह मिलती थी बैंक में अपने अकाउंट में। तो मैंने जो 9 महीने वहां काम किया उसकी मुझे तनख्वाह मिली है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी इस तरह का कोई केस हो, पता ना पहले भी ये हुआ है कि भाई वेल पा वो खत्म हो जाती है किसी वजह से, कि एड्रेस का मसला कोई और, कभी किसी के पैसे वापस नहीं लिए गए। या यहाँ पे हर चीज उछाली जा रही है कि नहीं इसकी तनख्वाह ली जाए वापस। अब ये जितना भी काम करने वाला है, ये सवाल जवाब करने वाला है, उठाने वाला है, ये डेनिश पीपल पार्टी के मेंबर है। और क्या फिर ये इत्तफाक है कि इन्हीं मेंबर के साथ, इसी मेंबर के साथ इसराइल के एम्बेसडर ने कुछ महीने पहले ये जब केस अभी शुरू हो रहा था या चल रहा था उसके साथ इसने मुलाकात की? तो देखें बहुत सारे डॉट्स होते हैं, उनको आपको मिलाना होता है। आप मुझे बताएं कि जब भी मुझे टीवी वाले ने पूछा आपके पास ऐसा क्या सबूत है, उस वक्त मैं सोच रहा था कि अब ये तो नहीं ना कि नेतन्याहू का मेरे पास वो लेटर पड़ा हुआ है जो जिस जहां वो प्राइम मिनिस्टर को लिख रही है कि इसकी इसको डीसीट किया जाए, इस तरह ये नहीं होता, ये पसे पर्दा लॉबियां काम करती है। फिर मैंने प्रूफ दिया कि पेलिंग्स के अखबार ने आर्टिकल शाया किया है जिसमें ये सामने आया है कि इसराइल 1,000 से ज्यादा लोगों को ए रोल पे लाना चाहती है जिसमें जर्नलिस्ट, सियासतदान हो और जो इसराइल क्रिटिसिज्म को खत्म करे। ये पॉल मेसन जो 13 साल एक सप्लर का चीफ एडिटर रहा है, ब्यूरो चीफ सॉरी रहा है, उसका बयान है टीवी पे, आज भी आप देख सकते हैं। उसने जब पेंशन पे गया था तब दिया, उससे पहले नहीं दिया। उसने दिया है कि इसराइल के खिलाफ अगर आप एक आर्टिकल लिखें या क्रिटिसाइज करें तो अगले दिन आपको एम्बेसी में बुलाया जाता है और वहां पे क्या कहते हैं आपको सफाइयां देनी पड़ती हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस जो है बहुत है। मैंने उस दिन टीवी पे ये भी कहा है कि जितना अरसा मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं आप यकीन करें और कोई एम्बेसडर आपको नजर नहीं आएगा। इसराइल का एम्बेसडर वहां इस तरह फिर रहा होता है जिस तरह उसका वो दूसरा ऑफिस है पार्लियामेंट, इतना इनका इन्फ्लुएंस है इस सिस्टम पे। और हम कहते हैं कि मैस का इन्फ्लुएंस है, हम कहते हैं कि और जो ऑल पॉपोर्ट एंड इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस है, तो जब इनकी बात आती है तो इसको इतना छुपाया क्यों जाता है, इतना कवर अप क्यों किया जाता है? तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हम जो है हम एक सिस्टम क्रिटिकल पार्टी है और हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी जो एक डीप स्टेट, या आप ये समझ लें कि एक जो सियासतदान यहाँ पे बैठे हुए हैं ये आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, ये कुछ और इंटरेस्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब आप इससे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, पूरे डेनमार्क में अवाम जो है अक्सरियत वो कहती है कि हमें अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं डेनिश जमीन पे नहीं चाहिए, ये हमने सारी कहते हैं कि वो यहाँ आएंगे उनके ऊपर डेनिश कानून भी लागू नहीं होगा, रहेंगे वो डेनमार्क में जो सोल्जर्स होंगे, जिस तरह नहीं होती बेस बनाते हैं मिलिट्री बेस बनाते हैं, तो डेनिश अब इन्होंने फैसला किया है कि अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो डेनमार्क में मुस्तकिल रहेंगे। पूरी डेनिश अवाम इसके खिलाफ है, इसके बावजूद जो पार्लियामेंट है उसने पास कर लिया कानून।
0: डेनिश अवाम खिलाफ है तो वोट क्यों देती है?
1: नहीं तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि वोट क्योंकि यही लोग होते हैं वोट देने वाले, इसीलिए तो हमने फ्री कॉने बनाई है ताकि अल्टरनेटिव भी हो किसी के पास कि कुछ लोग के किसी और पार्टी को भी वोट दें। मसला ये कि यही सारी पार्टीज हैं, यही एस्टैब्लिश पार्टीज हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अब पूरी आवाम जो है वो इसके खिलाफ है, इसके बावजूद इस पार्लियामेंट ने ये पास कर दिया कानून के डेनिश अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो डेनमार्क की पे में अब आएंगे। तो ये डेनमार्क के इंटरेस्ट में तो नहीं है, डेनिश अवाम के इंटरेस्ट में तो नहीं है, तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं? यानी कि ये और
0: चले
1: इंटरेस्ट
0: सिकंदर
1: है?
0: आते हैं जो है बजट हुआ, आपने बजट को देखा होगा या पास हो गया या अभी पास नहीं हुआ, गालबन पास हो चुका है, तो बजट को आपने किस तरह पाया?
1: अभी पास नहीं हुआ, अभी ये पास होगा 1 अक्टूबर को, जिसमें हमारे जो जो पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कम्यून में, आगा शम्बूस मीटिंग में होंगे, और हमने अपना एक, मैं समझता हूं कि ये बजट ऐसा बजट है जिससे यकीनन जो अच्छा तबका है, जो प्रिविलेज तबका है, जो अमीर तबका है, वो खुश होगा। तो जो मिडिल क्लास है, जो वर्कर वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो यहाँ की गरीब क्लास है, उसके लिए यही महसूस होगा उसे कि ये बजट उनके लिए नहीं बनाया गया। जो आंका योहानसन की और जो सोशलिस्ट पार्टीज की जो एक डीएनए थी, जो एक तरीका था, जो एक फोकस था लेबर पे और आम बंदे पे, आम आवाम पे, वो इस बजट में आप नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी भी बच्चों के हवाले से, बूढ़ों के हवाले से, उस सेट पावर के हवाले से कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो चेंज आएगा। और मेरा ये चैलेंज है कि इन पार्टी के जो कोपेनहेगन में कोई भी मेंबर है, कोई भी इनसे मुसलिक है, मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि आके मेरे साथ बहस करें और मुझे बताएं कि इस बजट में, इतने बड़े बजट में, बिलियन मतलब मिलियार्ड के बजट में, हमारे जो आम आवाम है, जो लेबर है, उसके लिए क्या रखा गया। बल्कि जो परसेंट वाइज पिछले साल के हवाले से उन पे अब कम जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और इसलिए ये बजट जो है, ये एक बार फिर जो सरमायादार है, जो यहाँ की इलीट क्लास है, उनके लिए अच्छा है। जो आम आवाम है, जो लेबर है, उनके लिए इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आप देखें कि इस वक्त हमें यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है बच्चों को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पैसे के हवाले से, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है रेंट के हवाले से, यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया। लेबर क्लास और जो मिडिल क्लास है, वो उनका हिसाब ये है कि वो कोपेनहेगन में आके काम तो कर सकते हैं, कोपेनहेगन के जो डेली लाइफ के जो पहिए हैं उन्हें चला तो सकते हैं, लेकिन वो इस शहर में रह नहीं सकते। कभी ये शहर होता था लेबर के लिए, कभी ये शहर में आम लोग रहते थे, आज इसमें आप तभी रह सकते हैं जब आपके पास 8-7-8 मिलियन करोड़ हो, जिसका आप मकान खरीदें, नहीं तो आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते। यहाँ पे किराए इतने महंगे हो गए हैं कि आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना एक्सपेंसिव है कि आम बंदा अपनी तनख्वाह पे रह ही नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने 123 साल के बाद सोशल डेमोक्रेट का लॉर्ड मेयर हटाया है,

0: कुछ नहीं। तो मैंने बहुत ही, मैं समझता हूँ, इस पे वर्क किया, काम किया, और मैंने उस जितनी भी पार्टीज थी जो इनके साथ आमतौर पे होती है, 27 साल से इनके साथ हर इलेक्शन में होती है, उन पार्टीज को मैंने हमारे साथ लगा के, हमने लिस्ट बना के और हमने इलेक्शन लड़ा। बेशक कि हमें उनका फायदा, उनके वोट का फायदा इस तरह नहीं हुआ कि मतलब हमने अपना मैंडेट खुद निकाला हमारी पार्टी ने, लेकिन ये मैं समझता हूं कि जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है, ये अब तो हमने सिर्फ कोपेनहेगन में किया, अब मेरा काम ये होगा कि मैं मुल्की सतह पे इन पार्टीज को जो है, और इनके दरमियान और हमारे दरमियान जो है, मैं अपने इसी तरह जिस तरह कि हमने कोपेनहेगन में मिलके एक लिस्ट पे इलेक्शन लड़ा है, इसी तरह हमें अब चाहिए कि हम नेशनल लेवल पे भी एक दूसरे की सपोर्ट करें, और मैं समझता हूँ कि हमें एक इकट्ठा जो है, एक आप जिसे कहते हैं सामा पार्टी, पार्टी अपनी अपनी रहेगी लेकिन सामा पार्टी जो है ना, इसको स्ट्रांग किया जाए। देखिए, इनको भी बहुत सालों से किसी की जरूरत थी, किसी ऐसी पार्टी की जरूरत थी जो इनके साथ चल सके, तो वो हमने दिखाया कि हमने कोपनहेगन में किया, और कोपनहेगन के इलेक्शन के बाद, इस इलेक्शन के बाद हमने उनको ये नहीं कहा कि इलेक्शन हो गया अब आप लोग जाओ, इस इलेक्शन के बाद हमने उनको बकायदा अपने साथ रखा हुआ है, वो हमारी कोपनहेगन की हर मीटिंग में होते हैं, साथ होते हैं, उनकी कोई प्रपोजल होती है तो वो हम उनका नाम लेके पार्लियामेंट के फ्लोर पे, असेंबली की फ्लोर पे कोपनहेगन में हम पेश करते हैं। एक तो ये काम हो गया। अब दूसरा काम ये है कि मैं एज अ पोलिटिकल लीडर इंडिपेंडेंट ग्रीन्स पार्टी का, फ्री कॉने का, अब मेरा ये काम होगा कि मैं पार्टी के साथ, अपने सीसी के साथ, अब जो आने वाले इलेक्शन है उनकी हम तैयारी करेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट तरीके हैं आगे तैयारी करने के, उस पे अलबत्ता जो है अब हमारा फोकस होगा, काम होगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी जो कोपेनहेगन की सीट है वो बरकरार है, उसमें अशम जो है वो हमारी पार्टी की उधर नुमाइंदगी करेगा, और मैं एज अ पोलिटिकल लीडर जो है, और अपनी जो सीसी के साथ, अब हम बैठ के जो ओवरऑल लाइन है, जो ओवरऑल जो पॉलिसी है, उसको हम देखेंगे और पार्टी को अगले इलेक्शन के लिए तैयार करेंगे इंशाल्लाह।
1: सिकंदर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया।
0: शुक्रिया जी।
1: सवा नाजरीन, ये थे मलिक सिकंदर सदीक, जो कि इंडिपेंडेंट ग्रीन पार्टी के फोरमैन हैं, चेयरमैन हैं। उनकी बातें आपने सुनी। सवा नाजरीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

0: मैं इसलिए यंग कह रहा हूँ जो के फटाफट जो एजुकेटेड हो और डेनिश अच्छी बोलता हो, जो के
1: रिजवान भाई,
0: नए
1: आप
0: यंग
1: यंग
0: लोगों
1: की
0: को
1: बात
0: अट्रैक्ट करते।
1: करते हैं तो यंग के हवाले जब सारी तंजीमात हवाले की जाती हैं, जिस तरह ये एम्बेसी के सामने डेमोस्ट्रेशन होती है, तो देख लिया यंग जो डेमोस्ट्रेशन करते हैं वो कितने लोग इकट्ठे करते हैं। पिछली दफ़ा अयूब साहब ने अपने हाथ में ये काम लिया तो उसकी तादाद भी देख ले। तो इसलिए हर चीज़ को यंग से साथ और उम्र सीधा के साथ नहीं तोलना चाहिए।
0: जी ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मतलब है कि आज अगर हमें यंगस्टर्स ज्वाइन करते हैं तो वो हमसे सीखेंगे, हम मौजूद हैं, ठीक है, ये ट्रेनिंग होती है बकायदा, और उसके बाद वो इस प्रोग्राम को अकेले हैंडल करेंगे। उसके दो फायदे होंगे, एक तो ये कि हम लोग जो आज यहाँ हैं वो कल नहीं होंगे, लेकिन शौकत खाना में तो चलते रहना है ना, अल्लाह ताला इसको आबाद रखे, कायम रखे। तो ये सफर कैसे चलता रहेगा, हम जब मतलब रिटायर हो जाएंगे तो फिर कौन शौकत खाना को चलाएगा, जब तक कि हमने ही आगे इसकी इसको ट्रांजिशन कहते हैं, जब तक हमने इसको आगे ट्रांसफर ना किया नई जनरेशन में। मेरी बात नहीं समझने की कोशिश कीजिए।
1: लेकिन मुझे ख़तरा महसूस हो रहा है कि आपने छोड़ दिया, आप जा रहे हैं यंग के हवाले करने के लिए, ये मेरा आपका आखिरी प्रोग्राम है।
0: मेरा मेरा तो ये कम से कम आखिरी प्रोग्राम था, मैंने बता भी दिया है वहां पे, अयूब भाई को भी बता दिया है कि अब मेरा एक तो दफ्तर के टाइम, एक मेन वजह ये है कि मेरा मसरूफियात बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात ये है कि मैंने तो पिछले साल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कह दिया था कि अब मेरा ये आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ा, और मैंने इनसे इस बार कहा कि हाँ ठीक है ये है, लेकिन इस दफा आखिरी है, आप किसी नए होस्ट को लेके आए, रिप्लेसमेंट लेके आए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर आप समझते हैं कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है मैं जरूर करूंगा, लेकिन ये है कि नाउ
1: तो
0: द न्यू
1: राजा
0: पीपल विल कम।
1: बाबर जो है उनसे अच्छा तो बहुत अच्छा बोलते हैं वो, बहुत अच्छा जो है वो शेर व शायरी भी करते
0: हाँ
1: हैं,
0: जी, मेरी राजा बाबर साहब के साथ मैंने
1: वो
0: बहुत से
1: भी यंग
0: प्रोग्राम,
1: है।
0: वो तो बिल्कुल यंग है ना जी, तो इसलिए उनका तो मैंने इसलिए जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो ही आपको बताएंगे कि क्या उनकी फीलिंग है, क्योंकि वो
1: चले
0: भी इस बात को
1: अपना रिजवान
0: लेकर
1: भाई, आपसे दिल लगी कर रहे हैं, चूंकि गप शप की शक्ल में ये प्रोग्राम है,
0: हाँ
1: मैंने आपसे टाइम लिया है तो उतना टाइम तो
0: जी
1: मैंने ये आपको पहले बता दिया था, मेरा इतना टाइम आपसे लूँगा। तो आप बताएं ज़रा, आँखों देखा हाल बताएं, क्या हुआ, किस तरह आप दाखिल हुए, किस तरह लोग आए स्टेज सेक्रेटरी पे, क्या उस स्टेज सेक्रेटरी ने क्या किया, किस तरह वेलकम किया, जी आँखों
0: जी
1: देखा हाल।
0: इस दफा बहुत मैं बड़ा पॉजिटिव एक वाइब्स मुझे ये आई कि मैं नॉर्मली एज ए होस्ट जल्दी पहुंचता हूँ, लेकिन चूंकि मैं उड़ीसा से आ रहा था तो मुझे थोड़ा डिले हुआ, लेकिन जब मैं पहुंचा हूँ तो तकरीबन आधी से ज्यादा जो कुर्सियां हैं वो भर चुकी थी, लोग आ चुके थे, और आहिस्ता आहिस्ता मतलब समझ लें कि 15 से 20 मिनट में पूरा हॉल जो है उसमें मेरे ख्याल मुश्किल से कोई कुर्सी खाली मिल रही थी, काफी लोग थे, और ज्यादा तादाद जो है वो ख्वातीन की थी, क्योंकि एक खातून जो गेस्ट है वो आ रही थी, तो उसके बाद फिर ये पता लगा कि वो भी तशरीफ ले आई हैं, हमने उनको रिसीव किया, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब को रिसीव किया, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी हमें जो प्रेजेंटेशन दी, और पूरे लोगों के लिए लंबी प्रेजेंटेशन थी, नॉर्मली लोग बोर हो जाते हैं लेकिन हर एक बड़े ही उसको गौर से सुन रहा था, और इट वॉज एक्चुअली अ वेरी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, आई वुड अप्रिशिएट, क्योंकि इससे जानकारी हमें ये मिली है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मिशन, तो ये डॉक्टर साहब ने बताया, काफी लंबी प्रेजेंटेशन थी लेकिन बहुत ही ज्यादा शेर हासिल गुफ्तगू रही, बड़ा उन्होंने बताया। उसके बाद फिर हमने रहीम जो हरीम साहबा को स्टेज पे बुलाया, और फिर बकायदा प्रोग्राम का आगाज हुआ,
1: ये हरीम
0: ऑनरेबल
1: साहिबा
0: प्रमोट,
1: कौन थी?
0: ये एक जनाब टीवी आर्टिस्ट हैं, ड्रामा में काम करती हैं, और कुछ मेरे ख्याल एक दो फिल्मों में भी काम कर रही हैं, उनकी फिल्में भी शायद एक दो आने वाली
1: उन्होंने
0: हैं,
1: कोई
0: लेकिन
1: ड्रामा किया या कोई नगमे सुनाए या क्या किया?
0: नहीं जी बिल्कुल, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से फंड रेजिंग को ही जो है वो हाईलाइट किया और इसकी इम्पोर्टेंस बताई, और जो खवातीन आ रही थी हमारी बहनें जो ऊपर फंड देने के लिए आ रही थी, डोनेशन देने के लिए आ रही थी, वो उससे हर एक से बिल्कुल उसी तरह मिली, जिस तरह एक अगर 1,000 दे रहा है और एक अगर जो है वो 100 क्राउन दे रहा है, वो उसी तरह ही अच्छे तरीके से वो मिली हैं, बहुत मोहब्बत से मिली हैं, और मैं फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कह लें मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, एक तो अब्बासी साहब से और एक इनसे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि जो यंग जनरेशन आ रही है वो पढ़े लिखे घरानों से आ रही है और एजुकेटेड है और मारा बहुत
1: रिजवान
0: तमीजदार।
1: भाई, सबसे ज्यादा किसने दिया जब उन्होंने मांगे डोनेशन के लिए, तो सबसे ज्यादा किसने दिए?
0: सबसे ज्यादा किसने दिए, बड़ा अच्छा सवाल किया है, कुछ लोग अपना नाम नहीं बताते हैं लेकिन मैंने जो देखा है चंद लोगों ने 3,000 से 5,000 दिए हैं, लेकिन उनकी तादाद कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन

0: जिन्होंने कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कह देते हैं जी कि हमारा नाम ना बीच में आए,
1: तो
0: पैसे
1: कुछ
0: छोड़
1: लोग
0: जाते हैं
1: लिखा
0: बॉक्स,
1: भी देते हैं।
0: कुछ लोग लिखा भी देते हैं। अब वो बॉक्स और वो जो लिस्ट है, वो जैसे मैंने बताया कि अभी हमारा इस सिलसिले में कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन बॉक्स में इस दफा सारे जो कैश था वो डाला गया है, ओपनली ना ट्रांसपेरेंट बॉक्स था, उसमें पैसे डाले गए हैं ताकि सबको पता लगे कि फंड्स जो है वो उस बॉक्स
1: अक्सर
0: में
1: हुआ
0: जाते हैं।
1: रिजवान भाई, लोग लिखा देते हैं, देते नहीं है, वो लिस्ट जरा हमें भेज दे ताकि हम पढ़ते रहें, यादानी कराते रहें।
0: इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है वो नाम लेना तो ठीक बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किधर है, लेकिन अल्लाह ताला जजा दे और उनको नेकी की हिदायत करे तो वो भी आके तो अपना फंड दे देंगे। नाम मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा बहुत ही कम होता है। ज्यादातर जो लोग हैं जो वादा करते हैं वो मेरा ख्याल है दे देते हैं पैसे तो।
1: अपना रिजवान भाई, ये अच्छी खबर नहीं है कि आप जो है वो जगह छोड़ रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं। नहीं, आप जैसे लोगों को रहना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें जो है ना, वहाँ जाकर किसी गमी के प्रोग्राम में तो बंदा नहीं शामिल होता, इंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं।
0: जी आप, ये आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो इस तरह का जो प्रोग्राम है ना, ये इतना लंबा प्रोग्राम नहीं होता। इसके लिए जहां तक मैं शुरू से इस चीज का कायल हूँ कि एक ही होस्ट काफी होता है। तो अब जिस तरह राजा बाबर साहब, जैसे मैंने बताया उनके साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, तो वो मेरे ख्याल काफी है इस पूरे इवेंट के लिए। और अगर हम किसी यंग को ट्रेन करना चाहते हैं, मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं कभी भी ना छोड़ता। मैं इसको, इससे मोहब्बत है मुझे मेरे अपने काम से, जितना भी छोटा मोटा मुझे आता है, लेकिन मुझे
1: तो जिस
0: काम
1: तरह
0: की
1: ये देखे ना,
0: वजह
1: ये फंड रेजिंग के लिए मेहमान आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं जो वहाँ के एक सिस्टम से हायर किए जाते हैं, तो इसी तरह आप परमानेंट यहाँ को बंदा भी हायर कर लें।
0: परमानेंट ये है ना जी कि नथिंग इज परमानेंट। तो उसमें जो यंग आएगा ना बंदा, मैं दोबारा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने इस मिशन को लेके चलते रहना है, हमारे बाद भी इसको चलते रहना चाहिए। और देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग दिस कि हमारी जो पूरी टीम है वो एक छोटी टीम को अपने साथ यंगस्टर्स को लेके उनको ट्रेन करना शुरू करें। देखिए बहुत चीजें हैं, सिर्फ होस्टिंग तो एक बहुत इसका छोटा सा हिस्सा है, जो मैनेजमेंट है जो इसमें ज्यादातर इसको, जिसको अयूब भाई अभी चला रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा इस प्रोग्राम में भी, के तौर से भी मैं यही कहूंगा कि अब कोई एक नया जो है, जिसको अच्छी यहाँ का कल्चर पता है, डेनिश लैंग्वेज में उसका अबूर है, उसको अयूब भाई के साथ समाबाइत करना चाहिए, उनके साथ मिलके काम करना चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, किन किन चीजों की तरफ ध्यान देना है, वहां से स्टार कैसे बुलाना है आगे आने वाले। आपको क्या पता है कि शायद आगे आने वाले टाइम में हम पाकिस्तान से कोई स्टार बुलाए ही ना, 25 साल बाद यहीं का कोई लोकल स्टार आया हो, कोई इंग्लिश स्टार आया हो, और उसके तौर से जो है, जो हमारी अगली जनरेशन है वो ये प्रोग्राम अरेंज करे। क्योंकि शौकत खानम को मैंने अपने बच्चों को ये बताया है और ये कहा है, वो भी हर प्रोग्राम में डोनेट करते हैं। मैंने उनको ये कहा कि बेटा मैं रहूं या ना रहूं, डेफिनेटली एक दिन आएगा जब मैं नहीं हूंगा, लेकिन शौकत खानम का ध्यान रखना और बेटा इसके लिए जो भी है वो काम करते रहना जिस तरह भी हो। एक बात मैं आपको मजीद बताना चाहता हूँ, ये जो फंड रेजिंग है ये हम क्यों करते हैं जबकि ऑनलाइन खुली हुई है। मेरे ख्याल आप भी, आपके जिन भी ये चीज होगी कि
1: बिल्कुल,
0: ऑनलाइन
1: लाइनें
0: ओपन,
1: खुली हुई हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं।
0: जी बिल्कुल, और समवन कैन डायरेक्टली डोनेट टू शौकत खानम पाकिस्तान। तो अपरेंटली लगता तो ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। लेकिन वजह, अब मैं आपको इसकी मेन वजह बताता हूँ कि हम ये प्रोग्राम क्यों अरेंज करते हैं। देखें ये जो ऑनलाइन है इस पे लोग 100 भेज देंगे, 200 भेज देंगे, 500 भेज देंगे, कुछ भी, लेकिन फंड रेजिंग में कलेक्टिवली सारे एक ही तारीख में पैसे जो हैं वो डोनेट करते हैं। और हम लोग जो के स्टेज पे होते हैं या हमारे जो स्टार आए होते हैं, मेनली उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो अपना लोगों को जब इसकी अफादियत बताएंगे। इंसानी दिमाग इस तरह राजा साहब काम करता है कि एक वक्त में आपका दिमाग एक फैसला करता है और अगले ही वक्त में वो उस फैसले को चेंज करके दूसरा फैसला कर लेता है कुछ खास चीजों में। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताया जा रहा है कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आप इसको इसमें 1,000 दे दें। मैं कहूंगा यार मेरे हालात तो ठीक नहीं है लेकिन मैं 1,000 दे देता हूँ। लेकिन राजा साहब जब वो मोमेंट खत्म होता है ना, तो उस वक्त मेरा माइंड भी चेंज हो गया होता है। ये इंसानी बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ और ये आप कहीं भी नेट पे चेक कर लें, इंसानी माइंड काम ही इस तरह करता है। तो फंड रेजिंग के प्रोग्राम में ये होता है कि जब हमारे जो گیسٹ ہیں جو اور یا جو شوکت خانم کے ریپرزینٹیو ہیں, وہ جب آ کے اس کی افادیت بتاتے ہیں, وہ جب آ کے اس کے فوائد بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے, تو وہ لوگ میرے جیسے لوگ جو کہ 100 کراؤن یا 200 کراؤن مہینے کا یا کبھی کبھار 100, 150, 200 اتنا مہینے کا ہم آن لائن بھیجتے ہیں, ان میں ان کو بھی ایک قسم کی انرجی ملتی ہے اور وہ بڑھ کے ڈونیٹ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک یہ خان صاحب جب ماشاء اللہ نہیں تھے, جیل میں باہر تھے, تو یہ باقاعدہ اس کے اوپر ایک انٹینسو ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی, تو اس سے یہ پتا لگا تھا کہ فنڈ ریزنگ ایونٹس میں لوگ زیادہ انٹینسٹی سے.
1: اچھا جس طرح آپ دیکھیں نا مسجد میں جاتے ہیں تو حالانکہ چندہ پہلے اکٹھا کر لینا چاہیے, کپڑا پھیلا لینا چاہیے, لیکن ہمیشہ جب جو ہی نماز ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی کپڑا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب کراؤڈ جب موجود ہوتا ہے
0: اس کا. دیکھیں آپ نے بالکل وہی بات کہی, آپ نے ماشاء اللہ اس کا جواب دیا مجھے, کہ جب آپ کے مطلب سمپل اردو میں جب آپ کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے نا جناب, جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے اس کی افادیت بتائی جاتی ہے. کچھ لوگ کچھ کام میں اور راجہ بابر بھائی مل کے کرتے تھے مطلب یہ کہ اب تو میں نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ ہم لوگوں کے
1: لیکن بابر صاحب سے جب بھی رابطہ قائم کیا جائے تو وہ کہتے ہیں میں ختم پہ جا رہا ہوں, بس ابھی ختم پہ آئے ہوں, ابھی فاتحہ پہ آئے ہوں, تو ابھی میں شکار پہ جا رہا ہوں, ابھی میں شکار کر رہا ہوں, ابھی میں جناب ابھی, یہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے تو ٹائم چاہیے.
0: جی ختم پہ تو ظاہر ہے وہ دعائیں خیر کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہ تو نیک آدمی ہیں, تو ظاہر ہے ان کا, میں بھی خود بھی ان کا بہت مداح ہوں. اور جس طرح میں دوبارہ یہ بات کہوں گا آن ایئر کہ میں نے اور راجہ بھائی نے شوکت خان
1: کو, آپ ذرا میری عرضی آگے بھیج دیجئے گا کہ ایوب صاحب کو اور اپنا راجہ بابر صاحب کو کل اتوار کے پروگرام میں ہم دعوت دیتے ہیں, ابھی ذرا مصروفیات اپنی کینسل کر دیں باقی.
0: اچھا جی میں بالکل, بلکہ آپ کا تو میرے سے زیادہ ان سے بات ہوتی ہے بھائی سے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اور انہوں نے کوئی 4-5 پروگرام مل کے کیے ہیں اکٹھے, اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ان کے پاس. دیکھیں یہاں پہ ایک قلت یہ بھی ہے کہ اردو کا لوگ کم جانتے ہیں.
1: اپنا رضوان بھائی بڑا مشکل ہے دو شیر سٹیج پر.
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اور وہ ان کو یاد ہوتے ہیں اور مطلب بولتے بھی موقع پہ ہیں, تو یہ بڑی ایک یونیک قسم کی کوالٹی ہے اور مجھے مزہ آیا ان کے ساتھ کام.
1: لیکن آپ زبانی بولتے ہیں وہ پڑھ کر بولتے ہیں؟
0: پڑھ کے اس لیے بولتے ہیں کہ کہیں کوئی, کیونکہ اردو زبان ظاہر ہے بڑی گہری ہے, لیکن میں جب میری ان سے ویسے اکثر بات ہوتی ہے تو
1: ہم تو ہزاروں غلطیاں کرتے رہتے ہیں اردو میں, کون سی ہماری جو ہم لکھنؤ کے پیدا شدہ ہیں.
0: وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی بہرحال میں تو تعریف کرتا ہوں جو آگے آتے ہیں, سٹیج پہ آتے ہیں اور آ کے فنڈ ریزنگ کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا راجہ صاحب کوئی آسان کام نہیں ہے, بے شک کہ آپ کسی
1: دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, لیکن آپ بہت آسان ہیں.
0: اچھا جی وہ کیسے؟
1: وہ آپ دیکھیں کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں, کسی جگہ کھڑے ہو, کسی گاڑی میں دیکھیں, لوگ آپ کے شیشوں پر ٹھک ٹھک کرتے ہیں.
0: ہاں جی لیکن وہ فنڈ ریزنگ نہ کر رہے ہوتے, وہ تو اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں.
1: اچھا یہ فنڈ ریزنگ نہیں,
0: کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا, کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا وہ تو اپنے لیے کرتے ہیں نا, کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا وہ بھی ہم جیسے لوگوں کے, جو کہ ہم تو خدا نہ خاصا ہم تو اپنے اپنا کام کرتے ہیں.
1: رضوان بھائی یہ ایک نوبل کاز ہے, اس کاز میں حصہ لینا چاہیے, چاہے سامنے دیں, چاہے چھپ کر دیں, چاہے بینک کی شکل میں دیں, چاہے اپنے نام کے لیے دیں, یہ ایک نوبل کاز ہے.
0: بالکل, اور میں اپنی ٹیم کے بارے میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ جو شاید آپ نہ جانتے ہوں, یہ جو ٹیم ہے پوری جن کا میں نے نام لیا ہے سمیت جو دو ہماری خواتین ورکر ہیں, ہم ویسے بھی اس کا پرچار کرتے رہتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ
1: خواتین ورکر کا نام بھی لیں تاکہ تجسس پیدا ہو خواتین میں.
0: جی خواتین کا نام آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں کے زمانے میں شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ تصویر نہیں دینا چاہتے تو انگوٹھا لگا دیں, بڑی پرانی بات ہے, تو ہم تو جناب اس ٹائم سے ہیں, اس لیے میں خواتین کا نام.
1: اچھا 2026 میں بھی یہی کچھ ہے؟
0: جی تو میری ابھی ان سے اجازت نہیں, یہ نہیں بات کہ میں نے ان سے بات نہیں ہوئی اس بارے میں کہ مجھے آپ کا میسج آیا تو میں نے پروگرام اٹینڈ کیا ہے, تو ورنہ میں ضرور نام لیتا, مجھے اس میں کوئی نہیں تھا, لیکن خواتین کا اس سے ظاہر ہے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کا نام لینا ہے کہ نہیں لینا, لیکن یہ کہ وہ بھی ہماری طرح ہی بہت محنت سے کام کر رہی ہیں. آپ وہ بیچ میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, وہ بیچ میں کٹ گئی.
1: آپ نے آج ایک نام نہیں لیا, اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ سوال کر لوں کہ سابقہ سٹی کونسلر لبنہ الہی صاحبہ کا آپ نام نہیں لے رہے؟
0: لبنہ الہی صاحبہ شاید کسی وجہ سے مصروف ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا یا ہمارے ساتھ وہ آئی نہیں ہیں, اور جیسے میں نے بتایا کہ میں تو پروگرام میں بھی اس پروگرام میں بھی میں بغیر تیاری کے آیا تھا کیونکہ میں اپنی کام میں بہت زیادہ مصروف, تو اس وجہ سے مجھے یہ محرکات نہیں پتا اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے, وہ بزی ہیں یا کہیں گئی ہوئی ہیں
1: یا نکال دیا سسٹم سے.
0: नहीं ऐसा देखें, हर एक एवरी वन इज वेलकम। मैं आपको इसका सबूत ये देता हूँ कि आप किसी एक्स वाई जेड को भेज दें रैंडमली और वो ये ना बताए कि मुझे राजा कपूर ने भेजा है, वो उसको आप अयूब भाई की तरफ भेज दें, हमारी तरफ भेज दें कि जी मैं शौकत खानम के लिए काम करना चाहता हूँ, वो आपको आके बताएगा कि किसने उसको रोका है। किसी ने भी नहीं रोका, हर बंदा वेलकम है। अगर किसी वजह से, तो मेरे से लुबनाबाजी की बात नहीं हुई है इस बारे में, लेकिन जो बातें मैं सुनता हूँ वो ये है कि इस पूरे प्रोग्राम में मैंने हार्डली एक मीटिंग अटेंड की है और उसमें कोई किसी के खिलाफ कोई बात नहीं हुई, किसी का जिक्र नहीं है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से जिस मीटिंग को मैंने अटेंड किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
1: आपको शायद अटेंड नहीं किया, आपने होस्ट किया है।
0: मैं मीटिंग्स जो हुई थी ना उस सिलसिले में जो हुई थी वो एक मैं उसकी बात कर रहा हूँ। होस्टिंग में तो जाहिर है मैं पूरे प्रोग्राम में मौजूद था, तो अच्छा फीडबैक भी मुझे मिला है और अल्लाह ताला करे कि
1: रिजवान भाई क्लोज करते हैं। मैंने आपसे आधा घंटा लिया था, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, माफ़। तो रिजवान भाई इसको सम अप करें कि इसमें क्या हासिल हुआ, क्या आइंदा करना चाहिए।
0: हाँ जी, मैं बिल्कुल दो मिनट लूंगा। वो ये है कि सम अप इस तरह मैं इसको करता हूँ कि ये जो मिशन है शौकत खानम का, ये चलता रहना चाहिए, ये क्यामत तक चलता रहना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला जिसने ये हस्पताल बनाया है उसको लंबी जिंदगी दे और इसको जो है वो महफूज रखे हर तरह की आफत से, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और अल्लाह ताला इस हस्पताल को हमेशा कायम दायम रखे। जो लोग बीमार होते हैं उनको पता है कि शौकत खानम उनके लिए क्या है। हम तो सिर्फ बैठ के बातें कर रहे हैं ना, हम तो लोगों के मतलब इस तरह उनको मैसेज देते हैं, लेकिन जो बीमार हुआ है उसको उससे पूछें ना, जो बीमार होता है ना वो, ये मेरी बात पूरे जो आपके सामाइन सुन रहे हैं वो सुन लें, जो बीमार होता है इस तरह का मर्ज जिसको लगता है ना, फिर वो पीटीआई का कारकुन रहता है ना वो मुस्लिम लीग का कारकुन रहता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की जरूरत होती है। एंड शौकत खानम इज प्रोवाइडिंग इट, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट दिस जर्नी शुड बी एन एवर लास्टिंग जर्नी, ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए हम रहें या ना रहें। मैं आपके तौर से दोबारा ये दरख्वास्त करूंगा अपने यंग जनरेशन से कि वो आके हमें ज्वाइन करें, ताकि जब वो आके स्टेज को संभालेंगे और डैनिश और उर्दू और इंग्लिश के मिले जुले उसके अंदर वो होस्ट करेंगे, तो जो यंग जनरेशन है वो भी आना शुरू होगी। आज हम लोग मौजूद हैं, मैं देख रहा था राजा साहब प्रोग्राम में ज्यादातर तकरीबन 90% लोग वो थे जो मेरी और आपकी उम्र और या जरा से छोटे होंगे, 10-12 साल का फर्क लगा लें, वो लोग बैठे हुए थे जिनको उर्दू समझ आती है, जो उर्दू समझते हैं। लेकिन हाउ अबाउट आवर यंग जनरेशन, क्या उनमें से इतने हैं जो कि इतनी गहरी उर्दू को या इतने जो हम जिस तरह की होस्टिंग में अपने शेर व शायरी बोलते हैं, लतीफे बोलते हैं, उनको समझ आ सके। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा स्ट्रांगली मैं ये कहूंगा, अयूब भाई भी माशाल्लाह शायद प्रोग्राम सुन रहे हो कि, और उनसे मेरी बात भी हुई है सिलसिले में, कि अयूब भाई हम अपने साथ यंग लोगों को ऐड करते हैं, बेशक उनको शुरू में बोरिंग लगे, उनको हम ऐड करते हैं ताकि वो ये सीखें और वो इस मिशन को लेके आगे चलें। हमारे पास ज्यादा साल नहीं है, ये जनरेशन चेंज होती है, ये ट्रांजिशन का पीरियड सारा वक्त चलता रहता है। आज आप बताएं कायदे आजम मोहम्मद अली जना मौजूद हैं, डॉक्टर कदीर खान मौजूद हैं, ये मुझे ये चलता रहता है, ये चेंज होगा। आज हम हैं कल हम नहीं होंगे, लेकिन शौकत खान का मिशन नहीं रुकना चाहिए। यंग जनरेशन से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज कम अक्रॉस, ज्वाइन अवर टीम, लर्न द थिंग्स एंड कीप दिस जर्नी मूव ऑन।
1: रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमने सारे सवाल आपसे किए, तीखे सवाल भी किए, लेकिन ये ऐसा नोबल काज है, इस काज के लिए सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और लेकर मैं हुकूमत वक्त से भी जो है वो अपील करूंगा कि डेनमार्क में भी आप देख लें कि यहाँ जब पेशेंट जाता है तो फुली 100% इलाज जो है वो पेशेंट का फ्री होता है। इसी तरह हुकूमतें भी इसी तरह के अस्पताल बनाएं, बाकी चीज़ों को लग्जरी चीज़ों को छोड़ दें, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी थी। सेहत है तो सब कुछ है। रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।

0: जिमी ऑकिंसन, उसका उनकी यही पॉलिसी है कि वो अपनी सियासत जो है फॉरनर्स के ऊपर और खासकर मुसलमानों के ऊपर उनको टारगेट करें। और इसी इलेक्शन कैंपेन में पिछले 1.5-2 माह से इन्होंने राज्य के जो है ना वो टारगेट किया है मुसलमानों को, और जो फॉरनर्स को तो किया ही किया है, लेकिन इस बार उन्होंने वो कहते हैं मुसलमानों के ऊपर एक बड़ा सख्त रवैया और सख्त हाथ रखा है, जिसके ऊपर मैं हैरानकुन तौर पर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यहाँ का जो मीडिया है वो ये चीजें देखने के बावजूद उनको ये नहीं कह सका कि यहाँ पर आप कंपेन करें लेकिन किसी के जो है वो मजरू ना करें, किसी के एहसास, किसी के जज्बात, क्योंकि यहाँ पर हाली जो मुसलमान और दूसरी दूसरी जो तबके के लोग हैं जिनका दूसरे रिलीजन से ताल्लुक है वो भी रहते हैं, तो आप सिर्फ मुसलमानों को क्यों कर रहे हैं? फिर आपने अगर अपनी सियासत में रिलीजन का कोई यो यो कितने फितना आपने अगर रखना है तो फिर आप सारे रिलीजन को, क्योंकि वोटर तो फिर आपके सारे हैं, फिर आप मेरा ये मानना है फिर आप सबको करें टारगेट सारे रिलीजन को। सियासत का ये मतलब है कि आपने दूसरे क्या कहते हैं मजहब को करना टारगेट। इस चीज की इनको शर्म आनी चाहिए कि जब आप सियासत करते हैं तो अपनी जो आपकी सियासी जो अहलियत है उसको उजागर करें। अगर आप इतने जोगे नहीं हैं तो फिर आप इस तरह की जो बेशर्मी है ये जो लोग करते हैं, खासकर ये जो पार्टी है, इनको ये शर्म आनी चाहिए कि आपके मंशूर में आपके जो आयन है जो आपके मुल्क का, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी तबके के जो जिसको वो मानते हैं जो उनका मजहब है उसको आप करें। इस तरह तो इधर कई मजहब हैं जिस यहाँ पर स्वीडन में, तो फिर आपके ये दोहरे मेयार हैं, फिर आप उन सबको करें ना, फिर आपको आपको इतनी है कि क्या दुनिया में हो रहा है, आपको ये भी पता है दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप दुनिया का देखना चाहते हैं आप किसे किसके बेनिफिशरी हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये तो सबको पता है, कहाँ से आपको पैसा आता है ये भी सबको पता है, कौन आपके पीछे है ये भी सबको पता है, यहाँ पर जो यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं उन सबको पता है इस बात का। और मेरा यही मानना है कि इस बार रिजल्ट इंशाल्लाह ताला पहले से आएगा मुख्तलिफ। जिन लोगों ने नेगेटिविटी करनी है, जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलानी है इधर स्वीडन में, जो ये लोग हैं उन्होंने तो उसके पीछे रहना है, वो तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते उनकी क्या कहते हैं उनके जो इंसान की फितरत है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं हो सकती, उन्होंने उधर ही जाना है। तो मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह ताला बस ये आप उस पॉजिटिविटी के ऊपर होना चाहिए कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो है एक अच्छी कोई पार्टी आएगी, एक पार्टी जो वो जीतेगी तो उसके ज्यादा वोटों के साथ, तो फिर वो किसी दूसरे जो उनका ब्लॉक है उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी जिनको ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि पहले होता आया है। तो तीसरी बात मैं आखिरी करूंगा, इधर हमें वो स्वीडन में कुछ काफी साल हो गए हैं, इधर ये पता नहीं एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है कि कोई वाजिया बर्तरी से या कोई अगर पार्टी जीतती है या उसको वाजिया बर्तरी बर्तरी ली देनी नहीं दी जाती उसको, 10-15 बल्कि दूसरी जो अपोजिशन है उसके साथ भी मिलकर गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, या उसके वो इतने वो हो जाते हैं बलागर। ये पिछले काफी सालों से, ये कोई एक नहीं काफी 20-25 सालों से ये हो रहा है इधर, और ये पता मेरा मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मेरा मुझे नहीं लगता ये कोई प्लानिंग के तहत किया जाता है कि ये इनका जो मीडिया है वो बड़ा स्ट्रांग है, वो प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें करवाता है और उसके बाद फिर जाके रिजल्ट जो है वो जो आना होता है वो अचानक ही वो नहीं आता, बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये क्या हुआ है। इन जैसे मुल्कों में ये हो रहा है तो फिर तीसरी दुनिया के मुल्कों का क्या क्या हालात होंगे।
1: चौधरी शौकत साहब, आपने बातें सुनी, शायद की नईम साहब की भी सुनी, तो आप चूंकि बिजनेस से मुंसलिक हैं शायद की तरह, तो मुख्तलिफ लोगों से आप मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, आपका तजिया क्या कहता है?
2: जी बिल्कुल, माशाल्लाह साहब दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें कही और जिससे आपको सबक भी मिलता है और इंफॉर्मेशन भी मिलती है। बात यह है कि देखें, यूरोप में इस तरह से जो कि एंटी फॉरनर हैं वो काफी बातें होती हैं, पार्टियों में भी बातें होती हैं और बड़ी जोर से बातें होती है, और इसका एक ही हल होता है, देखें इनको जब भी इलेक्शन होते हैं तो बर्तरी मिल जाती है जो कि एंटी फॉरनर होते हैं। क्यों? कि ये लोग जो है ना इस तरह से कंपेन करते हैं और जाके फिर ये लोग वोट डालते हैं, क्योंकि जो यहाँ के

0: यहाँ के डेनिश हो गए या स्वीडिश हो गए, वो जाके वोट डालते हैं, जाहिर है वोट डालते हैं तो उनको बर्तरी हासिल होती है। तो इसी तरह से हमें भी उन अपने जितने भी फॉरनर हैं उनको चाहिए कि अपना वोट डालें जाके, क्योंकि हम भी काफी तादाद में अब हो गए, हमारे बुजुर्ग आए, बुजुर्गों से हम आए, उनसे बाद हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हो गए हैं, तो हमें ये हमारी भी काफी तादाद होती है हर जगह पे, हमें भी चाहिए कि अपने जो है ना पूरी ताकत से अपने वोट डालें जाके, पूरी फैमिली है सभी जो है जिनको वोटिंग का हक है वो अपना वोट डालें, वोट का हक इस्तेमाल करें, ताकि हमारी भी मेजोरिटी हो के जो के साफ कॉर्नर रखते हैं फॉरनों के बारे में पार्टी, उनको स्पेस मिले, उनको जगह मिले, उनको बर्तरी मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, ताकि वो फिर जो के दूसरे एंटी फॉरनर है उनकी ज्यादा पावर ना हो। तो हमें ये सबको चाहिए कि ये हमें जितना भी जब भी कोई इलेक्शन हो तो हमें सबको मिलके ये जोर लगाना चाहिए कि अपने वोट डालने चाहिए, अपने दोस्तों को वोट डलवाने चाहिए, और बाकी जितने भी है ये सबको चाहिए कि अपना हक मांगे। हक मांगे उसी तरह से मांग सकते हैं कि जब अपना वोट डालेंगे आपको हक मिलेगा और आप अपना हक इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये है कि हम दुआ करते हैं कि अब एंटी फॉरनर ना आए जो को पार्टी है, अब जो इलेक्शन स्वीडन में होने जा रहा है तो वही जो को पाकिस्तान फॉरनों के हक में है कोई पार्टी है वही उनको ही बर्तरी हासिल हो, इंशाल्लाह होगी भी, तो ये ताकि ये हमारे एंटी जो कानून बनाते हैं उनमें जरा नरमी
1: उसको
0: आए
1: नजर
0: और
1: में आ
0: ताकि
1: जाएगी।
0: ये
1: आपका मौकफ
0: बेहतर
1: आ गया जी साहब, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप आते जाते रहते हैं, आपके बच्चे भी मालूमों में रहते हैं और आपको भी फीडबैक मिलता रहता है, क्योंकि फिर आप खुद मीडिया के एनालाइज भी करते रहते हैं। तो कल मेरी भी पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात हुई और मुझे सुनने का मौका मिला, वो अच्छी खासी जो है सियासी शऊर रखते हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर्स हैं, बिजनेस भी करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में वो अपना हिस्सा डालते रहते हैं। साहब आप क्या कहेंगे?
2: शुक्रिया जनाब राजा साहब। मालमो में मुकीम शाहिद साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी साफ गोई के साथ, और मैं समझता हूं कि उनकी मीडिया के ऊपर बहुत भारी और गहरी नजर है, उन्होंने जो अपनी बातें की है ना, उन्होंने तमाम तकरीबन जो हम इस वक्त आपके रेडियो आपकी आवाज से अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, दो तीन बातों की उन्होंने निशानदेही की है, और ऐसे ही नहीं की, उन्होंने गहरा मुतालिया करके मीडिया का देखकर रवैया एंटी फॉरनर के मुतालिक कि उन्हीं पार्टियों को लाया जाता है, बल्कि यहां तक भी उन्होंने कहा कि भी पैसे भी कहां से आते हैं, पैसे भी कहां से आते हैं। मैं यहां बात इतनी ही करूंगा जितनी शाहिद साहब ने फरमाई है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर कोई फॉरनर किसी किस्म की क्रिमिनलिटी करता है या जराइम में मुलव्वस है, बिल्कुल उसको पकड़ना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। इसके अंदर हम सब जितने भाई इस वक्त बातें कर रहे हैं हम मुत्तफिक हैं शाहिद की बात से, लेकिन स्पेशली तौर पर मुसलमानों को, मुसलमानों को फिर तीसरी दफा कहता हूं कि मुसलमानों को, क्या दूसरी कम्युनिटी जो है जो मुस्लिम नहीं है उनको वो नजर नहीं आती? ये शाहिद ने तस्वीर बनाकर हमारे सामने, पेंटिंग बनाकर पेश की है, इसको गौर से देखना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान में ऐसी सियासत चलती थी, हम कहते थे, एतराज उठाते थे, अगर यहाँ भी वही रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि अपनों को नवाजना, अपने चहेतों को मेहरबानी से पेश आना और दूसरों को इंसान ही ना समझना, ये डेमोक्रेसी नहीं है। और इन्हीं बातों की जो करीम है ना, शौकत साहब वीवा वाले साबिक रेस्टोरेंट के मालिक, इन्होंने इन बातों को बड़ी अच्छी तरह इसी तरह एक्सप्लेन किया है कि एंटी फॉरनर सबको नहीं एक ही तराजू में रखा जाता, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को रखकर एंटी मुसलमान जो हैं उनसे शुरू किया जाता है। यहाँ मैंने ये सवाल उठाया था बुखारी साहब के सामने, पहले तो उन्होंने कहा जी कि वो नए काउंसलर जो कोपेनहेगन में बने, हम दोनों मुल्कों की बात कर रहे हैं, और काउंसलर इंतखाबात पार्लियामेंट हो या बल्दियाती हो, इलेक्शन की बात ही हो रही है दोनों मुल्कों की, और यहाँ हमारे बच्चों के पास भी दो दो पासपोर्ट है, स्वीडन में भी दो दो पासपोर्ट है, मेरी फैमिली है वहां पर। तो बात यह है कि अगर इतने सारे हकूक नेशनलिटी के मिलने के बावजूद ये तफरीक क्यों आई है, اب یہ جو ہے تفریق کیوں آئی ہے اس لفظ پر ہم سب نے آپس میں غور کرنا ہے. تو بخاری صاحب کہتے ہیں جو کونسلر یہاں بنے ہیں پاکستانی, تو وہ جب اجلاسوں میں جاتے ہیں, کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں, سیاسی پارٹیاں ڈیبیٹ کرتی ہیں, مباحثہ کرتی ہیں, تو کیا وہ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ ترمیم کر رہے ہیں, جو آپ ترمیم کر رہے ہیں؟ کیا ان کی بات سنی جاتی ہے؟ یا بخاری صاحب وہاں جا کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں؟ یہ جائیں ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں جائیں, یہ جائیں, ان کو بہت آئین آتا ہے, ماشاءاللہ میں تعریف کرتا ہوں, بری بات نہیں, آئین کے یہ ماسٹر ہیں, مائن ہیں, انہیں پتا ہے, الف بے پے کا پتا ہے. اب میں آخری بات کر کے اپنے دوستوں کو مائک دیتا ہوں, زیادہ وقت نہیں لیتا. انہوں نے, بخاری صاحب نے کہا گالی دینے پر بھی سزا ہے, سکندر ملک سابق ممبر آف پارلیمنٹ موجودہ کونسلر بلدیاتی کوپن ہیگن اسٹیٹ, اس کے فیملی کو اس کو قتل کی دھمکی دی گئی ہے, کیا ایسی سزا ملے گی کہ دوسرا آدمی, ہم جو پانچ آدمی بیٹھے ہیں, ہمیں بھی کوئی دھمکی ایسی نہ دے کہ جس کو نمونہ بنا کر میڈیا پیش کرے؟
1: میں جی شاہ صاحب آپ کی طرف ذکر کیا گیا, پھر میں عدنان کی طرف آتا ہوں, نعیم صاحب کے پاس چلتا ہوں. جی شاہ صاحب.
3: جی بالکل, شاہد نے بات کی اور حاجی اسلم صاحب نے بھی, انہوں نے سیکنڈ ٹائم یہ کوسچن ریز کیا ہے. حاجی صاحب میں نے اس کے اوپر اس لیے بات نہیں کی کیونکہ یہ اب کیس جو ہے یہ عدالت میں چلا گیا اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. وہ بندہ جو ہے اس کو پولیس نے باقاعدہ عدالت میں کیس بنا کر بھیج دیا ہے اور وہ پکڑا گیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو کیس بن گیا, اس سے یہ کیونکہ اب عدالت میں کیس ہے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. اور جو چیز, ہاں جی, جو عدنان نے بات اپنا شاہد نے بات کی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہم عرصہ دراز سے اس ریڈیو پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایجنسیاں جو ہیں وہ جو ہے ڈیموکریسی چلاتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں, سب سے پہلے حاجی صاحب آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, آپ یہ حساب لگائیں کہ جب 70s میں ہم آئے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, انہوں نے ہمیں ماں کے گھر میں جیسے بچہ جاتا ہے, بھوکا ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے, تو ماں اس کو سب کچھ دیتی ہے. تو ڈینشوں نے ہمیں ہاتھ کھول کر یہاں پہ ہر جگہ رکھی, ہم نے محنت کی, کام کی, اپنے نام بنائے. اب جب یہاں پہ بہت زیادہ 90s میں فلوتنگ آنی شروع ہوئی تو میں نے اس وقت آواز اٹھائی تھی اپنے پلیٹ فارموں پہ, پاکستانی پہ بھی اور دوسروں پہ بھی, کہ خدا را یہ جو فلوتنگ اور ان وان دا لا ہے, اس کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں تو اس کو اکٹھا نہ ہونے دے, فلوتنگ قانون رہنا چاہیے اور ان وان دا کا قانون جو ہے اس کو لہدا رہنا چاہیے کیونکہ یہ آئین کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں, یہ تو ایسے بولتری مار رہا ہے. تو میں خاموش ہو گیا. آج اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. میں سب سے پہلے اسی ریڈیو پہ خود اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا راشسٹ میں ہوں. جب میں اپنی برادری کو, اپنے یہ جو پانچ سات ساتھ بیٹھے ہوں, میں ان کو اپنے برابر کے حقوق نہیں دیتا تو میں گوروں کو کیسے کہوں گا؟ میں آج بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈنمارک کے اندر, سویڈن کے اندر جو صحیح مسلمان ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو بالکل ان کی طرح ہیں, وہ 99% زیادہ محفوظ ہیں بہ نسبت ان کے کہ جو خود پنگا لے کے تو اپنے حالات کو خود خراب کرتے ہیں. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس پہ ہمارے لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ آخری ووٹ بھی اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ نہیں ڈالے گا, دیکھیں یہ جو کونسلر نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے ہیں یہ کسی کے محتاج نہیں, یہ صرف آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کا نام آ جائے لسٹ کے اوپر کہ آپ اس ملک کے اندر جہاں رہتے ہیں, کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہیں, تو آپ کو انٹرویشن کے اندر آپ کا نام آ جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ آ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. آپ نے بے شک کسی مخالف پارٹی کو دے دے, کسی اور کو دے دے, لیکن جب آپ کا ووٹ کٹ جائے گا, آپ ووٹ ڈالیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہماری ملک کے اندر دلچسپی لے رہا ہے اور اس سے جو ہے آپ کے حقوق. اب ڈنمارک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ 61-62% بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو پر آپ پاکستان چلیے اور چلو جی چھٹیاں دے چلیے خسما نکھائے. تو اس طرح وہ جو ہوتا ہے وہ منفی رویہ اختیار کیا جاتا ہے. जिनको जो पार्टी हमारे खिलाफ है वो इनको कैश करवाती है, वो कहते हैं ये लोग इंटरग्रेट नहीं होंगे, ये लोग तो कहते हैं कि वोट ना डालो, इसमें तरीक को ले आएंगे, दूसरी पार्टियों को ले आएंगे, और फिर ये जो जो सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे शायद ने अभी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ, देखिये 99% मुसलमान ऐसे नहीं, बड़े बड़े आला पोस्टों पे स्वीडन में भी बैठे हैं, वहां पे सिक्योरिटी की सबसे बड़ी जो है वो पाकिस्तानी है, इसी तरीके से डनमार्क के अंदर ISR से लेके हर जगह पे ऊंची ऊंची पोस्टों पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, मुसलमान बैठे हुए हैं, लेकिन उनका एहतराम जो है हर जगह होता है। तो लिहाजा मैं तो इतनी बात करूंगा कि हाजी साहब अगर मैं आपकी इज्जत नहीं कर सकता तो मुझसे बड़ा राशिस्ट कोई है ही नहीं, मुझे दूसरों पर तनकीद करने की जरूरत
1: नहीं, का कोई हक ही नहीं पहुंचता। नईम साहब आपकी तरफ आते हैं, नईम साहब आपकी हमें मिला, आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, अच्छे लोग मिले, आपने मेज़बानी की, वहाँ लोग मुख्तलिफ नज़रियात के थे, मुख्तलिफ पार्टी की सोच रखने वाले थे, लेकिन सारे पढ़े लिखे थे, वहाँ तो मुझे कोई पार्टी सियासत नज़र नहीं आई, वहाँ तो स्वीडन की सियासत नज़र आई। अगर इस तरह के लोग कम्यूनिटी में मौजूद होते हैं तो कुछ अनासर होते हैं, शायद ने देखे बातें की, सब तारीफ़ कर रहे हैं, शायद की अदनान की तारीफ़ कर रहे हैं, हाजी साहब की कर रहे हैं, शाह साहब की कर रहे हैं, जब इन नज़रियात के लोग मौजूद हैं तो फिर हमारे लोगों में कौन चीज़ें ये डाल देता है
4: बरादरियां।
5: असल में ये जो स्वीडन का महले वकू है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों के या फॉरनर फॉरनर के दुश्मन है, कोई और नहीं है। जब हमारा जो जो हमारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कोई सोसाइटी हो गई, कोई और ग्रुप हो गया, कोई नात ग्रुप हो गया, कोई ये इस्लामी ग्रुप हो गया, मिनाजुल कुरान हो गई, जब हम उसमें तफरके डालने शुरू कर देते हैं कि ये एक हम ब्लॉग बना लेते हैं, कोई ग्रीन पगड़ियों वाला आ गया, कोई और पाकिस्तानियों ने कोई और इस तरह की सोसाइटियां बना ली, तो कोई हम सियासत में आ गए, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, यहाँ पर हमें कभी भी इलेक्शन में आके पाकिस्तान की सियासत को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। जब यहाँ पर इलेक्शन हो सबसे जरूरी बात सोचनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए, हम स्वीडन में बैठे हुए हैं, और हमें स्वीडन या डेनमार्क यहाँ की सियासत के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि हम पाकिस्तान स्वीडन का इलेक्शन हो या डेनमार्क का इलेक्शन हो तो हम अपने मुल्क की पार्टियों को यहाँ पर रो रहे हो। हमें उनको बिल्कुल, आप किसी भी पार्टी से मुंसलिक हो सकते हैं लेकिन उनका इनके साथ अलग नहीं जोड़ना चाहिए, और जो इलेक्शन पे भी खड़े हों उनको भी यही समझना चाहिए ये हमारे पाकिस्तानी भाई इलेक्शन करे हैं, इनको हमने सपोर्ट करनी है, जब इनको सपोर्ट करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन होगी। अब जो जैसे वो इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर वाकई अभी ये कौन सा हमारे बुजुर्ग फरमा रहे थे, ये बड़े अच्छी बात कर रहे थे कि यहाँ पर देखें बड़े बड़े ओहदों पे मालमों में पाकिस्तानी लोग, अरबी लोग फायज हैं माशाल्लाह, जिनकी तनख्वाह 1 लाख से 2 लाख करोड़ है पर मंथ, तो वो मतलब वो कम्यून के जो फाइनेंस की जो चीफ है वो भी एक अरबी लड़की है, तो मतलब कि यहाँ पर हैं बहुत सारे लोग हैं, बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं जो इसमें आए हुए हैं, तो इसका मतलब हमें जगह मिलती है, लेकिन जरूरत एक बात इस बात की है कि हम लोग इकट्ठे रहें, एक दूसरे को समझें, हम यहाँ की सियासत को समझें, अपने बच्चों को यहाँ की सियासत के अंदर लाएं, और हम इंटीग्रेट इस सिस्टम में हों, ना कि इंटीग्रेट हों यहाँ पे सोच हमारी पाकिस्तान में मेंटली तौर पर रहें और पाकिस्तान की सियासत को यहाँ पर घसीटते रहें। आप सपोर्ट करें, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ कोई जो है ना सियासत उसको भी समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखें जितना भी माहौल है, अब जो नए लोग आए हैं इस इलेक्शन में वो काफी इंटीग्रेट हुए हैं, उनको काफी हद तक लोगों ने बताया समझाया है, लोगों को पता चला है कि यहाँ पर अगर हम सियासत में नहीं आएंगे, हम वोट नहीं देंगे तो ये मुस्तकबिल हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला होप और पॉजिटिव रखनी चाहिए।
1: चलें शायद आप बात करें आखिर में।
6: जी राजा साहब, मैं इस जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके हवाले से बात करूंगा। इसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने जो देखा है स्कैंडिनेवियन जो मुल्क हैं इनमें खासकर देखा है, मैं इसके अंदर चले यूरोप में दूसरे ममालिक में इंग्लैंड भी इंग्लैंड को भी शामिल कर लेता हूँ क्योंकि वो भी उधर से भी मेरा है वास्ता, मेरे भाई हैं उधर। तो 3 किस्म के वोटर होते हैं इधर। एक जो पहला जो 4 साल जो है ना इस सियासत को फॉलो करता रहता है, पूरी जो सियासत चल रही होती है अपने उस मुल्क के अंदर पार्टियों की, और दूसरा जो वोटर है वो जो नंबर दो जो वोटर होता है वो बहुत कम फॉलो करता है, वो अपने रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ होता है लेकिन फॉलो करता है लेकिन बहुत कम, ना होने के बराबर। तीसरा जो वोटर है ना वो है सबसे खतरनाक इधर, और वो होता है जिसे कहते हैं कंफ्यूजन का शिकार। और वो जब किसी महफिल में बैठता है, ये भी लोग बैठते हैं महफिल में, आपसे आपके साथ भी बैठते हैं, दूसरे फॉरनर्स के साथ भी बैठते हैं, बातें करते हैं, आपस में बैठते हैं, तो उसमें वो यही बातें छते जब चलती हैं बैक चैनल जब बैठते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि नौह यश के एक की मीन यानी कि मैंने अपना जो वोट है यश के एक तील से मैं पी ए खैश को क्या कहते हैं इधर जिमी आकर्षण को तो कतई मैं वोट नहीं दूंगा या दूंगी। तो जिस दिन वोट होता है इनका ये है, ये वो वोटर है जिस दिन वोटिंग होती है जिस दिन, तो वो जब घर से निकलने तक कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, जब वो जा रहे होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि वीरू है यस इतने मैं आज अपना जो वोट है वो मैं क्या कहते हैं एक वो कास्ट करूंगी मेरा ख्याल है फिर एक हैस्को को ते फ सेकिंग स्कूल यानी के मैं ये समझती हूँ कि इससे जो है ना हमें कोई नुकसान ना हो जाए, तो हम नुकसान से बचने के लिए हमें वो कहते हैं बचा लेंगे, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ या मैं नहीं समझता कि वो ठीक है, लेकिन मैं एक सेफ्टी की बुनियाद बनना आज जिमी आकर्षण को वोट वोट वोट में कास्ट कर देता हूँ। ये नंबर तीसरा वोटर है यहाँ पर जो कंफ्यूजन का शिकार होता है वो कहते हैं आहार तक, और ये भी बड़ा वो एक वो खतरनाक वोटर है। तो मैंने मैंने जो बात की इसके हवाले से क्या कहते हैं ये जो है यहाँ पर मीडिया मीडिया का किरदार, मैं इसको फिर दो टोक कहूंगा, मैंने इस मीडिया के इनके मीडिया के किरदार को खासकर मुसलमानों के ऊपर तनकीद या बराए तनकीद जिसे कहते हैं वो एक इस हद तक चली जाती है। यहाँ पर जो डिबेट होती है 1.5-2 माह से बंदा हैरान रह जाता है, और वो इतनी दिल शिकनी कर देते हैं यानी कि इस हद तक चले जाते हैं कि वो आप सोच भी नहीं सकते। आपने खुद देखा होगा कि यार ये लोग हैं वो, तो जब फिर मैं पीछे जाके फिर इनकी हिस्ट्री देखता हूँ 200 साल पुरानी 300 साल पुरानी, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है 1000 साल पुरानी, फिर मैं देखता हूँ 300 साल, यार ये तो वो लोग हैं जो ये अभी तक इनके जेहन से वो तकबर इनके जेहन से वो चीजें नहीं निकली, ये तो गुलाम बना के रखते थे, ये तो ये इनकी देखें जाके इनके इनके मकरूह चेहरे कि ये इतना जुल्म करते थे, ये उधर नहीं इनकी नजर पड़ती कि तुम लोग क्या करते थे, तुम लोग ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और ये बात इनको फिर बावर करानी पड़ती है, फिर ये उसके ऊपर छुपते हैं, फिर पीछे कहते ये बात ना करें, ये एक माजी है इसके ऊपर बात ना करें। मैं कह माजी है आप अभी भी मॉडर्न तरीके से इस तरह लोगों के साथ ऐसे कर रहे हैं, आप क्या करते थे, आप अफ्रीकन मुल्कों से लेके गुलाम कहाँ कहाँ नहीं आप लेके गए, अमेरिका लेके गए हैं, साउथ अमेरिका लेके गए हैं, वहां जाके आप गन्ने की काश से लेके क्या क्या आपने नहीं किया उनसे कराए जुलम, 200 साल तक आप जुलम कराते रहे, मिलियंस आप लेके गए, मिलियंस ही आपने मारे लोग, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप ये बातें कर रहे हैं और अभी भी आपके अंदर इतनी वो कराहत है, इतना गुस्सा है, इतना आप ये इंसानी हकों की जो बात है ना ये उन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती जिनके दोहरे मियार होते हैं, यही वो लोग हैं जो इंसानी हैं।
1: शायद आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। अजी साहब आप बुजुर्ग आदमी हैं, शाह साहब भी बुजुर्ग हैं, तो मैं चाहूंगा अगर कोई आप आखिर में कोई कमेंट देना चाहे तो हमारे पास 2-3 मिनट हैं। जी शे अपना हाजी साहब
2: जी मुझे कह रहे हैं आप
1: जी हाजी साहब आपको
2: बस मैं यही कहूंगा जी कि उन्होंने तारीख भी दोहरा दी शाहिद ने, और मैं एक बात करता हूं कि एक आदमी ने डैनिश को मशवरा दिया कि आप ऐसे कर लें, उसने कहा तुम मुझे मशवरा दोगे, हम तो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करके आए, तुम्हारा मशवरा हम माने, ऐसा नहीं हो सकता, हम सीनियर हैं, आप दो नंबर हैं, आपका दर्जा नेशनलिटी मकान डिग्री हाई सब कुछ होने के बावजूद हम आपको कि उन्होंने कहा कि पूरे यूके में मिलियन मिलियन जो है मुसलमान रह रहे हैं बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान और दुनिया से, उन्होंने उनको सब कुछ हकूक देने के बावजूद ان کو درجہ دوم کا شہری سمجھ رکھا ہے. شاہد کے الفاظ کی میں تشریح کر رہا ہوں.
1: راجی صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. غالباً عدنان جو ہیں وہ سن رہے ہیں, مائک ان کا کام نہیں کر رہا.
3: جی بہت بہت شکریہ سب کا, اور امید ہے کہ آج اچھا رزلٹ آئے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ دو ہمارے امیدوار مالبو سے کامیاب ہوں گے. یاد رکھیں کہ جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کا کمی تھا, یہ ہمارے گاؤں میں اس طرح تھا, یہ فلانا تھا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ اربوں پتی بھی ہو جائے, آپ کے پاس روز رائز گاڑی بھی نیچے ہو جائے, تو جب آپ ووٹ کے لیے کھڑے ہوں گے سیاست میں آئیں گے تو پھر وہ آپ کے نیچے سے کرسی ضرور کھینچے گا. ہمیں یہاں پہ پہلے سب سے پہلے انٹیگریشن کا مطلب سمجھنا چاہیے اور ہر کلمہ گو کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے. وہ اس کا کردار کیسا بھی ہو اس کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا, خصوصی طور پہ سیاسیوں کو. شاید نے جیسے ذکر کیا, آپ یاد رکھیں کہ جب میں یہاں کی وینٹرا پارٹی میں 1972 میں میں نے جوائن کی تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو فارنر مجھے ملے وہ پولش اور چیک ریپبلک اور چیک سلواکیا کے اور دوسرے کمیونسٹ کنٹری سے آئے ہوئے لوگ تھے. آپ کے سویڈن میں بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ رشین کنٹری سے اور ڈی آر سے اور دوسری ممالک سے وہاں پہ پولش وغیرہ بھی آ کے سیٹل ہوئے ہیں. اور اب وہ لگتا تو سویڈن ہے کہ ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو ہے یا فورتھ جنریشن وہاں پہ پیدا ہو چکی ہے. وہ لوگ جو ہیں راشسٹ ہیں, وہ جو اصل سویڈش ہے یا اصل ڈینش ہے وہ آپ سے تھوڑی سی آرگومنٹ تو ضرور کرے گا, لیکن اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کا رویہ جو ہے تھوڑا سا نرم ہے تو وہ انسکول کر کے معافی مانگ کے چلا جائے گا. تو یہ جو سیاست ہے یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں اپنا طرز عمل جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, سچ بولنا چاہیے, کامیابی پھر جو ہے وہ سچائی پہ ہی ہے. آپ سب کا شکریہ جی,
1: کامیابی سے چائے پیے. سب لوگوں کا بہت شکریہ جی, آپ لوگوں نے قیمتی ٹائم دیا, چھٹی کا دن تھا, اور نعیم صاحب اسپیشلی آپ کا رباری آدمی ہے, آپ کا بھی جو ہے وہ آپ کے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کا بھی ٹائم ہم نے لیا, شاید آپ کا بھی ٹائم لیا, حاجی صاحب آپ کا ٹائم بھی, شاہ صاحب آپ کا ٹائم بھی, تو پاکستان زندہ باد.
3: زندہ باد,
6: زندہ باد.
4: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजर सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ़ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वज़ीर आज़म साहब ने की, एक और ज़्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिसम पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाज़ बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाज़ के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है وہ ڈنس کے فال کے فارٹی سے نہیں کیے بلکہ انہی انواندا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।